कर को गंध तरंग अंत को पावे। रुदन ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन भल उन्हें जो गावे। भल्ले

एक मन पुरखन अंगन ध्याओ, गुर प्रसाद हर गुण सद गाओ, गुण गावत मन हो।

अबला से अब गत दयायो इस भेंटे दारिद्र न चमते कल सहारता।

नाम निरंजन उर धरया। हर नाम रस गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे, कब कल ठकर हर दास ने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत प्रवाह अमेव अमरा तत, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अन भय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कल कल छकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अबर भरे। सतगुरु मत गूढ़।

निरंजन खरे लहा। सतगुर दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कर कर ठाकुर हरदास तनी, गुरु राम दास सर।

सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत भाए भंडार भरे। मेटा जन्मांतर मरण भव भाग चित लागा संतोष सरे। कब कल ठकुर हरदास करे गुरु रामदास सर अवर भरे। अवर भरे पायो अपार हृदय अंतर धारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तक।

प्रेम भरत परवाशीष पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रस गुत्ते मत माता।

पावे। गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जियो। सतगुण नाम एक लिव मन जते, जिन जन दुख पाप को कट होवे।

जगत भयो आनंदे तारन मनुख देखियो प्रकाश गुरु अंगद दियो निधान अकथ कथा।

पाँव ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो। सकल खनिस सूर दिन सैल करो फल फूल दियो। सुर नर सपत सम

काठो सीखन सतगुर कियो, दुख दर्द तिन के गए। सतगुरु चरण जिन परसिया, ते पश प्रे

गुरु गुरु ऐनस जाते दास भट बेनत कहे जो गुरु नाम रिद में धरे सो जन्म मरण दो ते रहे गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच बिचारे गुर करे मन मेरे गुर कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे गुर नैन भैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कै जिन गुरु न देखो न कियो ते अकथ संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाद शब्द जिसके रे सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तैने रे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परे रे जो हर बुध हृदय सिद्ध चाहती गुरु गुरे गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गरु सुख पायो होती जो प्यास प्यो सेवन की बंसत सिद्ध को विद मिलायो पूरन भवन ठौर बसोरसे बासन सुजो दंस धायो गोविंद वाल गोविंद पुरी समझलन तीर विवास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख दे गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरो निसबासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरो भन दास तो आस जगत गुरु की पारस भेत परस करो रामदास गुरु हर

ज्ञानियों शब्द हर हर जते नाम नवनिध आते रसन ऐनित रते सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अनमार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों वचन गुर हृदय धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख इत उत तो।

गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐनक करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

उदत गुर गहर गमीर बेअंत हर नाम नगे हीर मन मिलत लेवलाये उन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुरु ध्याये अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत

गुर मिलत मुन जन रे तरे नार दाद सन काल हर गुरु मुखे तरे एक नाम लग तजो रस अन

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव।

का ब्रह्म भरम शुभ छुटकार, अवलो का ब्रह्म भरम सब छुटकार, दिव दृष्ट कारण करण सतगुरु गुरु सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया।

पारस को जो तसरों पे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अल

तिन तरयो समुद्र रुद्र थिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन

ओ बले छलन सबल मलन भंग फलन कान कुवर नय कलंक बजी डंक चढ़ दल रविंद नियो राम रवण दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जरम करम मच्छ कच हो बराय।

ही पाता। गुरमुख संगत सबे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा विक रुद्रादिके, काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाए परमार्थ, सत्संगत से ती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद

गुर समरथ गय किरिया धूप बुध सुमत समारन को उन धम दुजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जय सासु और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले उदाहरण।

मन इच्छत ही फल पावत है। रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधास परपूर्ण सब त्रंग प्रगट तिन आदर,

ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परदास को। वेद बाणी सहत ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन जैना सजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ भेद किए फिरत उदास को। सोतन सतगुण सुख भाई कृपा।

कुंत लोक प्रगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल समूजो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदासे तारो संसार माया मद मोहते अमृत नाम दियो समरथे उनकी रतवंत सदा सुख संपते रिद्ध अर सिद्ध ना छोड़े।

के पसीस धर्यो गुर हथे तीन भवन भरपूर रहो सोई अपन तरस क्यों ना जगत कोई आपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे अविनाशी अचल अजौनी संभो पुरखो तुम आपार परे करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन ध्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में हर परम पद पायो सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज धारी अगम ज्ञान रस रस हियो गुरु अमरदास।

सुदामा खूब भगत हर के जुगणन अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिणन। करम कर तो दर्श परस पारस बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। जैसे तुग सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जय सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निद पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल संगत धन धन करो। जय सतगुर लग प्रभु पाइए तो सतगुण सिमरो नरो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड़ो पासे। तांते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नाशे। कव कीरत जो संत चरण मुन लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ज्यों अंगद अंग संग नानक गुर त्यों गुरु अमरदास कै गुरु रामदास। जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निस्बासुर हर चरण निवास। सांते संगत सगन भाय

जैते खतअत होए रहस मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानु, तीनी भगत प्रेम निवलाई। आते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद क

आद जुगाद अनाद कलाधारी प्रलोय अगम निगम उधरण जरा जमे आरो गुर अमरदास फिर थपयो परगामी तारण तरण अग अंत

तैं जन्म ते गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सो जस वखाणियो। भगत जोग को जैतवार।

दम भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल संहार तोए जस भगता कुल सौदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

जह देखा कह एक है गुरमुख प्रगट होए। दुख निसारण शब्द है जे मन वसाए कोए, गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए। नानक हो करते खप मोए खूहन लख असंख, सतगुर मिले सोबरे साचे शब्द अलंख। जिना सतगुर इक मन सेविया उलझन लागो पाए, गुर शब्दी हर मन वसै माया की पुख जाए। से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए, नानक होर पाप।

आए बौरस साल में सवार दी खट रस मीठे पाए क्यों बाणी पगत सलाम दे हर नाम चित लाए मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए तै पगती पगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ वे परवाह है कित खादे कित पाए सतगुर के पाने जो चले कित पासे हर गुण गाए तन तन कर जुग नानका जे चले सतगुरु भाए सतगुरु ना सेवियो शब्द ना रखियो उधार तिग तिना का जीविया कित आए संसार गुरमति पौ

0: नाम रतन प्रकाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्के सिरे दिल नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर के शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे भंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए, एक उपजे एक बिनस जाए हुक्मे आवे जाए। जम्मन मरण न चुकई रंग लगा दूजे भाए, बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए। जिनको कृपा धारियन तिना सतगुरु मिलिया आए, सतगुरु मिले उल्टी भई मर जीव्या सह सुवाए। नानक भक्ति रतिया हर हर नाम समाए, मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई। कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए न पाई, पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय।

पुत कलत मोह हेत है अंत बेली को न सिखाए सतगुरु सेवे सो सुख पाए नाम वसै मन आई नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी बिन नाम है दुख रोए आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए हों मैं अंतर मैल है शब्द ना काढ़े तोए नानक बिन नावे मैलिया मोए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंगले तिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे प्रगास ओ ना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरु वचन ना करे विसास ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विकास हर ज्ञानिया की रखदा

आए बिख का मारण हर नाम है गुर गरुड़ शब्द मुख पाए जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए मिल सतगुरु निर्मल होया बिख हो मैं गया बिलाए।

सतगुर पुरख निर्वैर है नित हृदय हर लिवलाए निर्वैर नाल वैर रचाएंदा अपने कर लूकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंदिन जले सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित पौंक दे बिखा दे दूजे भाए बिख माया कारण परम दे फिर कर कर पत गवाए बेसवा केरे पूत ज्यों पिता नाम तिस जाए हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तिस बलिहारण जो सतगुरु लागे पाए नाम लगे से उबरे बिन नाम जम पुर जाए नानक बिन नाम है

जिन को पूरब लिखिया तिना पेटिया गुरु गोविंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन आपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार। ऐथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द सियाप दे तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नर्क पा जा गया सिर डंड लगा भोपार गुरमुखा करा ऊपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर शब्द जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नगरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह शब्द सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन।

सिद्ध सुजै, नानक गुरमुख मन स्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार, ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओना अंतर ज्ञान न ज्ञान है हरसो प्रीत न प्यार, मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दियानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार, नानक गुरमुख सोहने सिद्ध सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसे जिस नाल, गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल, हर मंदर वस अनेक है नवनिध नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल, वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल, मन मुख दै दिस फिर रहे अत तिसना लोभ विकार, माया मोह न चुकई मर जमे वारो वार, सतगुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार, जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार, हर हर नाम से आए मन हर दरगे पावे मान, किलविक पाप सब कटिए हो मैं चुके गुमान, गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान, हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम, तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए, तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ, जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय ते जाओ, एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ, पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए, तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए, सतगुर विच वडियां वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए, इक हुकम मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए, संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ, नानक हुकम तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ, तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहा रह जाओ, से दाड़िया सचिया जे गुर चरनी लगन, अंदन सेवन गुर आपना अंदन अनदरहन, नानक से मोह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए, सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे, सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए, नानक बिन सतगुर सच ना पाई है मन मुख भूले जाए, बाबीहा प्रयो प्रयो करे जल निज प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार, तिस चुके सहज उपजे चुके कूक पुकार, नानक गुरमुख सांत होए नाम रखो उरदार, बाबिया तू सच चाओ सच्चे सौ लिवलाए, बोलिया तेरा थाए पवे गुरमुख होए अलाए, शब्द चीन तिक उतरे मन लै रजाए, चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवे सह चुबाए, जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए, नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागे आए, बाबीहा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुवाए, सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए, आप पछाणे प्रीतम मिले वुठा छह बरलाए, चिम चिम अमृत वरसदा तिसना पुख सब जाए, पूप पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए, तुरु खसम पेजिया सच्चे हुकम पठाए, इंद वरसे दया कर गूड़ी छह बरलाए, बाबी हे तन मन सुख होए जां तत बूंद मोह पाए, अन तन बहुता उपजे तरती शोभा पाए, अंदिन लोक भगत करे गुर कह शब्द समाए, आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए, हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए, पै का सह सिगार करो सच रहो लिव लाए, नानक नामो मन वसे हर दरगे ले छड़ाए, बाबीहा सगली तरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश, सतगुर मिले जल पाईए चूके भूख प्यास, जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास, बिन बोलिया सब किस जानदा किस आगे की चै अरदास, नानक कट कट एको वरतदा
ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ, ਹਰ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਪਰ ਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਏ। ਸਬਦੇ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ, ਹਰ ਬੁੱਠੈ ਮਨ ਤਨ ਪਰਫੜੈ, ਸਭ ਜਗ ਹਰਿਆ ਹੋਏ। ਵੱਡੜੈ ਚਾਲ ਚਲੁੰਬੜੈ ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ ਕਿਸ, ਨਾਉ ਲਈਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਪੰਨਣ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੈ ਬੋਲੇ ਪੱਲੀ ਬਾਣ, ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਕੀਆ, ਤਿਸੈ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਆਪ ਛੋੜੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸੱਚਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਹਉਮੈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਬੁਝ ਨਾ ਸਕਾ ਕਾਰ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਉਣ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇਂਦਾ, ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਵਿਹਾਨ। ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਸਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲਹੇ ਸਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਆਏ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੋਗ ਨਾ ਪਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮਹਿਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਗੁਰ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਜੇ ਪਵੈ ਬੇਦ ਪੜੈ ਜੁਗ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਫੇਟੈ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਵੇ ਮੋਗ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਖਸਮ ਕਾ ਮਤ ਪਵੀ ਫਿਰੈ ਚਲ ਚਿਤ, ਮਨਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸੁਖ ਕੇ ਪੁੱਛੈ ਮਿਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਕਰ ਦੋਸਤੀ ਸਤਗੁਰ ਸੋ ਲਾਏ ਚਿਤ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕੱਟੀਐ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵੀ ਮਿਤ। ਪੁਲਿਆ ਆਪ ਸਮਝਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ।

बिन दर्शन क्यों तृप्ति है, नानक मिले सुभाए गुरमुख के मन रहसी है, जिना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बहारे, जासो देखन अपना नानक जीवन भी हरे, जिना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया, राती अतैडे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई है, अंध रह आनंद नानक सह समाई है, सच्चा प्रेम प्यार गुरु पूरे ते पाई है, कबू ना होवे पंग नानक हर गुण गाई है, जिना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन फिरी विहुनिया, गुरमुख मेले आप नानक चिरी विछुनिया, जिनको प्रेम प्यार तो आप पहलाया, कर्म कर नानक लेहो मिलाए, मैं जाचक दीजे नाम।

जिना अंदर नाम निदान है, गुरबाणी विचार तिनके मुखसद उजले सच्चे दरबार, तिन बैंदियां उठदियां कदे ना विसरे जे आप बख्शे करतार, नानक गुरमुख मिले ना विछड़े जे मेले सृजनहार, गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी सुखसार, नदर करे जिस आपनी तिस लाए हे प्यार, सतगुर की सेवे लग्या पौजल तरह संसार, मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार, नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए सब दुख निवारण हार, मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चितलाए, उत्कलत कुटुंब है माया मोह वधाए, दरगह लेखा मंगी है कोई अंत ना सकी छाए, बिन नाम है सब दुख है दुखदाई मोह माए, नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए, गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए, हुक्मो सेवे हुक्म अरादे हुक्मे समय समाए, हुक्म वर्त नेम सुच संजम मन चिंदिया फल पाए, सदा सुहागन जे हुक्मे बूझे सतगुर सेवे लिव लाए, नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लहे मिलाए, मन मुख हुक्म ना बुझे बपुड़ी नित हो मैं कर्म कमाए, वर्त नेम सुच संजम पूजा पाखंड परम न जाए, अंकरों कुसुद माया मोह बेदे जो हस्ती छार उड़ाए, जिन उपाय तिसे न चेते बिन चेते क्यों सुख पाए, नानक परपंच किया तुर करते पूर्व लिखिया कमाए, गुरुमुख प्रतीत पाई मन मानिया अंदिन सेवा कर समाए, अंतर सतगुरु गुरु सब पूजे सतगुरु का दर्श देखे सब आए, मनिए सतगुरु परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए, हौ सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए, नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए, जिन प्रिया सोने हो से सज्जन मैं नाल, अंतर बाहर हौ फिरा पी हृदय रखा समाल, जिना इक मन इक चित ध्याया सतगुरु सो चित लाए, तिनकी दुख पुख हों मैं वड्डा रोग गया निर्दोख पए लिव लाए, गुण गावे गुण उचरे गुण मैं स्वय समाए, नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याए, मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार, कूर कमावे कूर संग्रह कूर करे आहार, दिख माया तन संच मरे अंत होए सब चार, कर्म तर्म सुच संजम करे अंतर लोभ विकार, नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरगह होए खुआर, सब ना रागा विच सो भला भाई जित वस्या मन आए, राग नाद सब सच है कीमत कही ना जाए, रागे नादे बहारा इन्नी हुक्म ना बूझिया जाए, नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए, सब किस किस्से होया ज्यो तिसे धीर जाए, सतगुरु विच अमृत नाम है अमृत कहे कहाए, गुरमती नाम निर्मलो निर्मल नाम ते आए, अमृत बाणी तत है गुरमुख वसै मन आए, हृदय कमल प्रगासिया ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सतगुरु जिन को मेलियन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए, अंदर तिसना अग है मन मुख पुख ना जाए, मोह कुटुंब सब कूड़ है कूड़ रहा लपटाए, अंदिन चिंता चिंतवे चिंता बद्दा जाए, जम्मन मरण ना चुकई हो मैं कर्म कमाए, गुर सरनाई उबरे नानक ले छड़ाए, सतगुर पुरख हर त्याय दा सतसंगत सतगुर भाए, सतसंगत सतगुर सेव दे हर मेले गुर मिलाए, यो पौजल जगत संसार है गुर बोहित नाम तराए, गुर सिखी पाना मन्या गुर पूरा पार लंगाए, गुर सिखा की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाए, गुरु मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया आए, जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छड़ाए, गुर सिखा नो साबास है हर तुठा मेल मिलाए, गुर पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया, राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग देखाया, हौ मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया, गुरमती जम जोहे न सके सच्चे नाए समाया, सब आपे आप वर्ते करता जो पावे सो नाए लाया, जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया, मन अंतर हो मैं रोग परम पूले हो मैं साकत दुर्जना, नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना,
गुरमति हर हर बोले, हर प्रेम कसाई दिन रात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत में टोले, गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया, मन अंत न काहू डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गुल बोले।

रते से जे मुखना मुड़ान जिनी सिंजाता साई चार चार पौधे कच्चे बिरही जिन्ना कारना आए तने विहूना पार सितंबर पाही सेती जाले तूड़ी विच लुडंदड़ी सोहा नानक तैसे नाले गुर कै शब्द अरादिए नाम रंग बैराग जीते पंच बैराया नानक सफल मारू एह राग जामू इक ता लख तौ जिती पिनने दर कितड़े बामन बिरथा गयो जनम जिन की तो सो विसरे सोरठ सोर पीजिए कबू न फीका होए नानक राम नाम गुण गाये दरगह निर्मल सोए जो प्रभ रखे आप तिन कोई न मारे अंदर नाम निदान सदा गुण सारे एका टेप अगम मन तन प्रभ धारे लगा रंग अपार को न उतारे गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारे नानक नाम निधान हृदय उरहारे करे सो चंगा मान दुई गणत लाहे अपनी नजर निहाल आपे लहो लाए जन देहो मति उपदेश विच्चों परम जाए जो सुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट दे वस दूजी नाही जाए नानक सुख आनंद भये सब की मन रजाए गुर पूरा जिन सिमरिया से भय निहाल नानक नाम आराधना कारज आवे रास पापी कर्म कमाव दे कर दे हाय हाय नानक ज्यो मथन माधानिया क्यों मथे धर्म राय नाम से आए साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवें कीतो पवन पुनीत खुबड़ी कुठाए मिठी जलन कुमंत्रिया।

हटड़े बाजार सौदा करन मन जा रहा, खट वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार, पंखा प्रेम ना जाने पूली सिरे गवार, नानक हर बिसराय कै पौंदे नरक अंधार, माया मनो ना विसरे मांगे दम्मा दम, सो प्रभ कितना आवई नानक नहीं करम, चिच्चर मूल ना छुड़ी दो जिच्चर आप कृपाल, शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर तन माल, खंब विकांदड़े जे लहा किन्ना सावी तोल, तन जड़ाई अपने लहा सुख जन टोल।

जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एह वस्त जी नह जाई, नित नित रख उधारो, तम संसार चरण लग।

पांचों नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भात अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशल।

लाई, माल राग कौशक संग लाई, मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौशक उभारा, खौखट औ पौरा नद गाए, अष्टमाल कौशक संग लाए, पुन आयो हिंडोल पंचनार।

सुरमानंद पास करे आए चंद्रबिम मंगलन सुहाए सरसबान औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

सुख पाइय इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइय है। हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक।

कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सतियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख घर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया समाई।

पछताए। कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का वह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल

जे को मन जाने मन कोई, मन्ने मार्ग थाक न पाई, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाई, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन

आऊ कुदरत कमण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पखसार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमा

एक वार, जो तुझ पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे।

अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कमण सो वेला वखत कमण कमण थित कमण वार कमण से रुती माह कमण जित होवा आकार वेल न पाया पंडती

कोई जान करता सिर ठीक ओ साची आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आख

आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा आसुलू एक तात लेखा हुए ता लिखिए लेखे हुए वनास नानक वड्डा आखिए।

पवह समुंद ना जानिए है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाऊं।

आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गण।

एकेइके जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल वपार मूल वपारिये।

आहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख ना सकह केई के जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए।

देवतियां दर नाली गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पंडर खीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाह सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख चरम पत चोली।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश निसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाती सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग वजोग दोय कार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन केले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिमें चिलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एकावार कर कर वे कह सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख हो लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पा

जोर जोर ना जीवन मरन नह जोर, जोर ना राज माल मन शोर, जोर ना सुती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार, जिस हाथ जोर कर वेख सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राति रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आख हो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते बर में काट करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड इथे नाद बलोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्व संभाले वाजे तेरे नाथ।

पंडित पढ़ रखीस जुग जुग वेदा नाली गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पाए आली गावन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाली गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारी गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद भावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बीचारे सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन अपाई कर कर देख कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहा पात साहिब नानक रहन रजा।

सिखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाव, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर सरन संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास, राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चितम है उद्दम जा।

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव।

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू कर

या सब हुए तुद बिन दूजा अवर ना कोई। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला इत सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह दुबियाले मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। ना हों जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा।

सो कर राख वडाई तोय रहाउ विसे चसियां कड़ियां पहरा थिती वारी माह होआ

तब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाउ सहस तव नैन नन नैन है तुह कहो सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए किस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो

क्रोध लगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडाही पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मन

साखत हर रस साधना जानिया, इन अंतर होमै कंडाही। ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है, जमकाल सह सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम सुमानी, दुख जन्म मरण भव खंडाही। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाही। जन नानक नाम।

सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाओ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाओ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाओ श्री राग महला पहला।

जित बोले पत पाई सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भाव है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल जिन हिरदै रहिया समाए तिन का क्या सा लाहना।

जित सेवियै सुख पाईऐ तेरी दरगाह चलै मान रहाउ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम सुने है वखाण है जेतड़ी हौ तिन बलिहारै जाउ ता मन खीवा जानिऐ जा महली पाए थाउ नाउ नीर चंगियाईयां सत परमल तन

पास सो क्यों मनहु विसारिय जाके जी प्राण तिसविन सब अपवित्र है जेता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कच मस कर।

तारी है डर गया क्या हुई। श्री राग महला पहला गुणवंती गुण वीथर अवगुणवंती चूर जे लोड़ है वर कामणी नह मिली है फिर कूर ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना पाई है फिर दूर मेरे ठाकुर पूरे तख्त अडोल गुरमुख पूरा जे करे पाइए साच अतोल रहाउ प्रभ हर मंदर सोहना तिस मेहमान कलाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोटरी साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ू गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलहा हर नाम गुर सर सागर बोहितो गुर तीर्थ दरियाओ जे तिस भावे उजली सत सर नामन जाओ पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास पूरे थान सुहावन पूरे आस निरास नानक पूरा जे मिले क्यों घाटे गुणतास श्री राग महला पहला आप वो भैनी गल मिले अंक सहेलड़िया मिलके करह कहानियां समरत कंत किया साचे साहिब सब गुण अवगण सब असहा करता सब को तेरे जोर एक शब्द बीचारी है जा तू ता क्या होर रहाओ जाए पुछो सुहागणी तुसी रावया कि

आखण आखी है, आखण तोट ना होए, मंगण वाले के तड़े दाता एको सोए, जिसके जी प्राण है मन बसे है।

पाचमोए अंतर तृष्णा याग गुर राके से उबरे होर मुठी तंदे ठग मुई प्रीत प्यार गया।

सच मिले गुरमत पल्ले पाए सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दरगाह पैंदा जाए श्री राग महल पहला तन जल बल माटी भया मन माया मोहे मनूर औगण फिर लागू पए कूर बजावे तूर बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे पूर मन रे शब्द तरहो चित लाए जिन गुरमुख नाम ना बूझिया मर जन्मे आवे जाय रहाउ तन सूचा सो आखी है जिसमें साचा नाउ भय सच राती देहोरी जेहवा सच सुआउ सच्ची नदर निहाली है

गुरमुख नाम सलाहिय हौ मैं निवरी पाही रहाव। सुन सुन गंडन गंडिय लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओहो वे परवाहु अतोलवा गुरमुख कीमत सार। लख सियाण पजे करी लख सियों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी गुरमुख चीन आप। तन मन गुर पह वेचिया मन दिया सिर नाल। त्रे भवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल। सतगुर मेल मलाया

जप दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथै धंध पटाई है सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी पर

मन माहे क्यों दरगाह पत पाईए जां हर ना वसै मन माहे गुर मिलिए सुख पाईए अगन मरे गुण माहे मन रे अहन सहर गुण सार।

हर हीरा गुर माहे सत संगत सत गुर पाई अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाई है गुर परगास ज्यो अगन मरै जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास जम जंदार न लगई त्यों भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए साकत सच न

मन मानक निर्मूल है। राम नाम पत पाई मिल सत संगत हर पाई है। गुरमुख हर लिवलाई आप गया सुख पाया। मिल सल लै सलन समाई जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवे जाई। जिस सत गुरु पुरख ना भेटियो सो भौ जल

तै ना पवह तिन हर गुर दर्श ना होए। खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए। खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए। नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला। राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना। हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह। श्री राग महला पहला कर दूजा। तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार। पबन केरे पत ज्यो ताल टुल जुम्मन हार। रंग मान लै प्यारिया

आपे रसिया आप रस आपे रावण हार आपे होवै चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहिब राव रहिया भरपूर रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहु बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागनी देख हमारा हाल।

को रह ना भरिए पाई, सोई काजी जिन आप तजिया, एक नाम किया आधारू, है पी होसी जाए न जासी, सच्चा सिर जन हारू, पांच वक्त निवाज गुजार है।

ओहे तू ओना का तेरे ओहे असी बोल बगाड़ बगाड़ है बोल तू नदरी अंदर तोल है तोल जह करनी तह पूरी मत करनी बाजो घटे घट काट।

बहु भीख कर परमाइये मन हृदय कपट कमाई हर का महल ना पावई मर विस्ता माही समाई मन रे ग्रह ही माही उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए परगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतिया गत मुक्त करै मह पाए हर का नाम त्याई है सत संगत मेल मिलाए जे लख इस्तरियां भोग करहै नवखंड राज कमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिन्नी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछे रिद सिद फिरै ओना तिल ना कमाए जो प्रभ भावै सो थीए अवर ना करना जाए जन ना

पारस परसे पारस हुए ज्योति ज्योत सुमाई जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई मन भुखा भुखा मत करह मत तू करह पुकार लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार निर

निर्मले हौ सद बलिहार है जास हृदय जिनके हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिन्नी पछाणिया से देख है सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन वसै औगणवंतिया दूर मनमुख गुण तै बाहरी बिन नावै मरदे झूर जिन शब्द गुरु सुन मन्निया तिन मन त्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिव लाए पग खिसै रहना नहीं आगे ठौर ना पाए ओह वेला हथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उबरै हर सीती लिव लाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गाव है हर नित पढ़ है हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम त्याया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले

समाई तिनका जन्म सफल है जो चल है सतगुरु भाई कुल उधार है अपना धन जणेंदी माए हर हर नाम त्याई है जिसनो कृपा करे रजाए जिन्नी गुरमुख नाम त्याया विचो हो आप गुआई वो अंदर हो बाहर हो निर्मले सच्चे सच समाए नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याय श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन रास है गुरपूछ कर है वापार हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता अतुट भंडार भाई रे इस मन को समझाए हे मन आलस क्या करह गुरमुख नाम त्याई रहाओ हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना होवे दुबदा बोल खुआर सो जन रलाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखी है जो हर राखे उरतार मन तन सौंपे आगे धरे हों मैं विचो मार तन गुरमुख सो

हलत पलत सुख पाएंदे जप जप हृदय मुरार घर ही विच महल पाया गुर शब्दी विचार सतगुरु तेजो मोह फेर है मथे तिन काले अन दिन दुख कमाव दे नित जो हे जम जाले सुपने सुख ना देखनी बहु चिंता पर जाले सबना का दाता एक है आपे बख्श करे कहना किशु ना जावई जिस पावे तिस दे नानक गुरमुख पाई है आपे जाने सोए त्रि राग महला तीजा सच्चा साहिब सेवी है सच वडियाई दे गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे।

ताप पवित शरीरा हर हर मन वसाई सदा आनंद रहै दिन राती मिल प्रीतम सुख पाई जो सतगुर की शरणागति हों तिनकै बल जाऊं दर सच्चै सच्ची वडियाई।

संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए रहाउ। गुरमुख सदा सुहागणी, पिर राखिया उर तार। मिठा बोलह निव चलह, सेजै रवे पतार। शोभावंती सुहागणी, जिन गुर का हित अपार। पूरे भाग सतगुर मिले, जा भागै का उदौ होए। अंतर हो दुख भ्रम कटिए, सुख प्राप्त होए। गुर के पाणे जो चले, दुख ना पावे कोई। गुर के पाणे विच अमृत है, सहजे पावे कोई। जिन्ना प्राप्त तिन पिया, हों मैं विचों खोए। नानक गुरमुख नाम ते आई है, सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा, जां पिर जाने अपना। तन मन अगै धरे, सुहागणी कर्म

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचै सब कोई रहाऊ।

अंते हुए सखाई, अपने मन चित कह कहाई, बिन गुर आप ना जाई। हर जीव दाता भगत वछल है, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे, गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया। विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े, पायन गुणी निदान। मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए, गुर का शब्द मन वसै, मन तन निर्मल होए। रहाउ कर कृपा घर आया, आपे मिलिया आई। गुर शब्दी सालाही है, रंगे सहज सुभाई। सच्चै सच समाया, मिल रह ना विछुड़ जाई। जो

गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाउ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे भरम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं परवान भया।

कमाए जात सत संयम नाम है विण नाम है निर्मल ना होए पूरे भाग नाम मन वसै शब्द मिलावा होए नानक सहजे ही रंग वरतदा।

मन तन सीतल साच सियो सास ना बिरथा कोई मेरे मन हर का नाम त्याए साची भगत।

सज्जा सहज सुभाई, गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाय। इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय, आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय। बाणी वजी चहु जुगी सचो सच सुनाय, हम मैं मेरा रह गया सच्चे लया मलाय। तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय, नदरी नाम ते आई है बिन कर्मा पाया ना जाय। पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय, अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय। नानक शब्द मलावड़ा नामे नाम समाय, श्री राग महला तीजा अपना भौ तिन पायुन। जिन गुर का शब्द बीचार सत संगति सदा मिल रही, सच्चे के गुण सार दुबधा मैल चुकाइयन, हर राखिया उर तार।

शब्द सवारन हार रहाव सत्य शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मलाय अनदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाय ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाय जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेत्या तिन आय बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाय तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाय परम पलाना अंदोला फिर आवे जाय नदर करे प्रभ अपनी आपे लय मलाय सब किस सुनदा वेखदा

फिर मुतिया फिर मना पाया जाय। अज्ञान मती अंधेर है बिन फिर देखे भुख ना जाय। आव हो मिल हो सहेली हो मैं फिर देहो मलाय। पूरे भाग सत गुर मिले फिर पाया सच समाय। से सहिया सुहागनी जिनको नदर करे खसम पछाण है अपना। तन मन आगे दे घर वर पाया अपना हम मैं दूर करे। नानक सोभा वंतियां सुहागनी अन दिन भगत करे। श्री राग महला तीजा एक पिर रावे है अपना।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होई। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होय। श्री राग महला तीजा, जग होमै मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाए, मल होमै धोती किवै न उतरै। जे सो तीर्थ नहाए, बहु

का निर्मल हुए मन मुख हर हर कर थके मैल ना सकी धोए रहाव मन मैल भगत ना होवे नाम ना पाया जाय मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गुआय गुर प्रसादी मन वसै मल हऊ मैं जाए समाय ज्यों अंधेरै दीपक बाली है त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाय हम किया हम करहेंगे हम मूर्ख गावार करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार माया जेवड दुख नहीं सब भाव थके संसार गुरमती सुख पाई है सच नाम उरतार जिसनो मेले सो मिले हौ तिस बलिहारै जाऊं ए मन भगती रत्या सच बाणी निज थां मन रत्ते जिहवा रत्ती हर गुण सच्चे गाव नानक नाम ना विसरै सच्चे माहि समाव श्री राग महला चौथा घर पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले घर आए जां देखा प्रभ अपना प्रभ देखिया दुख जाए जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए हम मूर्ख मुग्ध शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाओ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मलावे सोए सतगुरु हर प्रभ बुझिया गुर जीवड अवर ना कोए हौ गुर सरनाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए मन हट किने ना पाया कर अपाव थके सब कोए सहस सियाणप कर रहे मन पूरे रंग ना होए कूड़ कपट किने ना पायो।

गुर मान है, गुर सतगुर करे सबास, हौ गुर सालाहे न रजू, मैं मेले हर प्रभ पास, सतगुर नो सब को लोचदा, जेता जगत सब कोए, बिन भागा दर्शन ना थी, भाग हीन बहर होए, जो हर प्रभ पाणा सो थिया, तुर लिखिया ना मिटै कोए, आपे सतगुरे आप हर, आपे मेल मलाए, आप दया कर मेल सी, गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जल है समाए, श्री राग महला चौथा, रस अमृत नाम रस अत भला, कित बिद मिले रस खाए, जाए पुछो हो सोहागनी, तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए, ओए वे परवाह ना बोलनी, हो मल मल तुआ तिन पाए, पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है, दुख कड्डै हौं मैं मार रहाउ, गुरमुखियां सुहागनी, तिन दया पई मन आए, सतगुर वचन रतन है, जो मन्ने सो हर रस खाए, से वड भागी वड जानी है, जिन हर रस खादा गुर पाए, एहो हर रस वण तिन सबत है, भाग हीन नहीं खाए, बिन सतगुर पल्लै ना पवे, मन मुख रहे बिललाए, ओए सतगुर आगै ना निवह, ओना अंतर क्रोध बलाए, हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत चोए, सब तन मन हरिया होया, नानक हर वस्या मन सोए, श्री राग महला चौथा, दिन स चढ़ै फिर आथवै, रैन सबाई जाए, आव कटै नर ना बुझै, नित मूसा लाज टुकाए, गुड़ मिठा माया पसरिया, मनमुख लग माखी पचै पचाए, भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोई ना होए रहाओ, गुरमत हर लिव उबरे, अलिपत रहे सरनाए, उन्नी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए, गुरमुख दरगाह मनी है, हर आप लए गल लाए, गुरमुखा नो पंथ प्रगटा, दर ठाक ना कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिव लाए, अनहद तुनी दर वज दे, दर सच्चै सोभा पाए, जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया, तिन्ना सब को कह सबास, तिनकी संगत दे प्रभ, मैं जाचक की अरदास, नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा, जिन अंतर नाम परगास, श्री राग महला पंजवां कर पहला, क्या तू रत्ता देख कै, पुत्र कलत्र शिंगार, रस भोग है खुशियां करह, मान है रंग अपार, बहुत करह परमाईसी, वरत है हुए अपार, करता चेतना आवई, मन मुख अंध गुवार, मेरे मन सुख दाता हर सोए, गुर प्रसादी पाई है, कर्म प्राप्त होए रहाओ, कपड़ भोग लपटाया, सोयना रूपा खाक, हैवर गैवर बहु रंगे, किए रथ अथाक, किस ही चेतना पावे, बिसरिया सब साक, सिरजनहार पुलाया, विण नावै ना पाक, लेंदा बद दुआए तू, माया करह एकत, जिसनो तू पतिया एंदा, सो सन तुझै अनित, अहंकार करह अहंकारिया, व्यापिया मन की मत, इन प्रभ आप पलाया, ना तिस जात ना पत, सतगुरु पुरख मलाया, इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है, क्या मानस हूं मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे,
दर फेर ना पावे कोई, नानक रत्ता रंग हर सब जग मह चानन होय। श्री राग महला पंजवा, मन बलास बहु रंग घना, दृष्ट भूल खुशियां, छत्र धार बादशाहियां, विच सहसे परियां, भाई रे सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख बधाते, दुख सहसा मिट गया रहाव, जेते थान थनंतरा, तेते भावे आया, तन पाती वड भूमिया, मेरी मेरी कर परिया, हुक्म चलाए निसंग होए, वरतै अफरिया, सब को वस गत कर लयोन, बिन नावे खाक रलिया, कोट ते तीस सेवका, सिद्ध साधक दर खरिया, ग्रंबारी वड साहबी, सब नानक सुपन थिया, श्री राग महला पंजवा, पलके उठ पपोलिया, बिन बुझे मुग्ध अजान, सो प्रभ चेतना आयु, छूटैगी बेबान, सतगुर सेती चित लाए, सदा सदा रंग मान, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कितक फकड़े, सब मुकदी चली रैन, रहाउ कुदम करे पस पंखी।

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो है मत मेरे मन एक सस्यों चित लाए एक सबिन सब तंद है सब मिथ्या मोह माय रहाउ लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होय जिस को पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गहे सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार थान सुहावा पवित है जिथे संत सभा ढोई तिस ही नो मिलै जिन पूरा गुरु लब्बा नानक बद्दा घर तहां जिथे मिर्त ना जन्म जरा श्री राग महला पंजवा सोई त्याई जीअड़े सिर शाह पातशाह तिस ही की कर आसमान जिसका सब सविस

सच देव हो अपना नाव। श्री राग महला पंजवा, नाम त्याए सो सुखी, इस मुख उजल होए, पूरे गुरते पाईए, प्रगट सबनी लोए, साध संगत कै घर वसै, एको सच्चा सोए, मेरे मन हर हर नाम त्याए, नाम सह

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जां कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपाव सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै हम मैं ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार एक सका मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुरपुरा।

मात पिता एक सकी मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोहना विसरै, जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको, थान थनंतर आप जी जंत सब जिन किए, आठ पहर तिस जाप इकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय, जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होय, गुर पूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए, श्री राग महला पंजवा जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया, से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल होए, किन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया, तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम त्याए, सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए, रहाउ जन्म मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल, थान थनंतर रव रहया

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे परदान तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आय अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाय मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय गुण गोविंद नित गावणी निर्मल साचै नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होय गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाओ मन किया इच्छा पूरियां पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरु नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवा पूरा सतगुरु जी मिले पाईए शब्द निदान कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागै सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाह कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाव मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाव नीमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो मरे न आवै जाय ना वे छोड़िया विछड़ै सब मह रहिया समाय दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय भाई रे मीत करहो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय रहाउ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवै शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरहो नहीं रात जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उर तार
मेरे मन हर बिन अवर ना कोए, प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोए रहाउ। रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक, मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक। गिनकी तात सह न जानी मन मुख पास न पाक, अंतर बाहर रव रहया तिसनो जाने दूर, तृष्णा लागी रच रहया अंतर हों मैं कूर। भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर, राख लिहो प्रभ करनहार जी जंत कर दया, बिन प्रभ कोई ना रखनहार महा बिकट जम भया। नानक नाम ना विसरौ कर अपनी हर मया, श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस, सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेस। हर नाम हृदय ना वसई कार्य कितै ना लेख, मेरे मन हर हर नाम त्याए कर संगत नित साधकी, गुर चरणी चित लाए रहाउ। नाम निदान त्याई है मस्तक होए भाग, कार्य सब सुवारी है गुर की चरणी लाग। हों मैं रोग भ्रम कटी है ना आवे ना जाग, कर संगत तू साधकी अठ सठ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरि साचा इहो सुआउ। एथै मिलह वडाइया दरगह पावह थाउ, करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ, मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागती सर्व कटा के नाथ, श्री राग महला पंजवा शरण पए प्रभ आपने, गुरु हुआ कृपाल सतगुर कै अपदेसै बिनसे सर्व जंजाल। अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो वसार रहाउ। गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे बिस्थार। सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार, तीर्थ वर्त लख संजमा पाईए साधु धूर।

पास बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते हुए बनास रहाउ साहिब मेरा निर्मला, तिस बिन रहन ना जाय, मेरे मन तन भुख अति अगली, कोई आण मलावे माई, चारे कुंडा भालिया सह बिन अवर ना जाय, तिस आगे अरदास कर।

सदा सदा आराधी है। एहा मातव सेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजवा संत जन हो।

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां घर दूजा गोयल आया गोयली क्या।

किस है त्यागु मन मेरे सर्व को आधार, गुर के चरण मन मह त्याई, छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिवलाए रहाउ, दुख कलेश ना पौ ब्यापै।

साधारै पाप सगली जाही। हौ तिनकै बलिहारने जे गुर की पैरी पाही। साध संगत मन वसै साच हर का नाऊ। सेवड भागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तो साज सवारिया हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया। हृदय का आधार रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार।

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर भरम काटिया सगल

भाव मान अपमान मंदे सो सेवक नाही, तात समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही, कहन कहावन एहु कीर्त करला कथन।

अर्थ वडियाइया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध बबेक सर्ब निरंतर रव रहिया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार सतगुर

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसे, पूर्ण होए काल रहाउ। गुर समरथ अपार गुर, वडभागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला, गुर जीवड़ अवर ना कोई। गुर करता गुर करनहार, गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किश नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए। गुर तीरथ गुर पार जात, गुर मनसा।

कीतड़ा लिखना जाने कोई जे सौ शायर मिलिए तिल ना पुजावह रोई कीमत किने ना पाईया सब सुन सुन आख सोई पीर पै कामर सालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन कहो अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना काही

तेरे जुगह जुगह पंडार महला पहला सबे कंत महलियां सगलियां करह श्रृंगार गणत गणावने।

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार सुबा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कह हित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जां धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेह लड़ी सूती बूझ ना पाए हौ सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी।

शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल ना लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गुर काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार ने दर सचै सचियार, सी चाने ज्यो पंखियां जाली बद कहात। गुर राखे से उबरी होर फाथे चो गै साथ, बिन नावे चुन सुटी है कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखी है सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या इन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानी है गुरमुख जिन्ना ज्ञान, सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए। साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए, ना मैं अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए। बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए, गुरमति परगास हुई।

सोहनी फिर रावे गुण नाल कामन कामना आवे खोटी अवगणियार ना सुख पिए सोहरे झूठ जली बेकार आवन मंजन डाकड़ो छोड़ी कंत वसार फिर की नार सुहावनी मुत्ती सो के तसाद फिर कै कामना आवई बोले फादिल बाद दर कर ढोई ना लह छूटी दूजे साध पंडित वाच है पोथिया ना बूझ विचार अन को मत्ती दे चल है माया का व्यापार कथनी झूठी जग पवे रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की वेदां करह विचार वाद विरोध सलाहनी वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुटसी कह सुन आख बखान सब गुणवंती आखिए मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं पावे प्रभ सोए नानक शब्द मलावड़ा ना वे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संयम साधी है तीरथ कीचै वास पुन दान चंगियाइयां बिन साचे क्या तास जेहा

रहाओ। गिण राशि वापारिया तके कुंडा चार, मूल ना बुझै अपना वस्त रही घर बार। बिन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कुड़ियार, लाहा एहन सनौतना परखे रतन विचार। वस्त लह कर अपने चल कारज सार, बण जारिया स्यों बणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार। संतां संगत पाई है।

सोह प्रभ जानिए साचो साचे नाई सा तन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग महली महल बुलाइए सो पिर रावे रंग सच सुहागन सा भली फिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंघर जाऊं बन मह भूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं नाम भूली जे फिरा फिर फिरे आऊं जाऊं पुछो जाए पंधाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोई श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन बसे सो जाने अब पीर सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोना किया करन हार राव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार हाट पटन गढ़।

प्रगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाई कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठौर ना पाइनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा दूर कर इउं मल जाए समाए सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोई सुखै को दुख अगला मन मुख बूझ न होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद।

ज्यो कलर की पीता तब लग महल ना पाई है जब लग साच ना चीता शब्द रपै घर पाई है।

ऐसे निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाईए हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे वारु वार सब सलाह है आपको बड़ो बडेरी होए गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए नानक शब्द पछा

जाने सुख सेजड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होई रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने पिर से जड़ी गूड़ा हित प्यार गुरमुख जान सिंजाणी है गुर मेली गुण चार सच मिनु वर कामणी पिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहन ना जाए हर वार घर सुहागनी निर्मल साच नाए मन मह मनुआ जी मरे तां पिर रावे नार इकतता गहराल मिले गाल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार हिन मह उपजे खिन खपै।

ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी है पाइय गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जय

कर रव रहया बख्शे भगत भंडार रहाव। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यो अधिको त्यों सुख कणु मन तन शांत शरीर बिन जल घड़ी ना जीवई प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सर पर थल हरियावली एक बू

खवै दुध कौ खफड़ ना दे पापे मेल वशुन्या सच वडे आई दे रे मन ऐसी हर स्यो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मन मुख सो जी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मन

गुरमत हुए ता पाईए, सच मिले सुख होए, सच्चा नेहो ना टुटई, जे सतगुर भेटे सोई, ज्ञान पदार्थ पाईए, त्रिभवन सोजी होए, निर्मल नाम ना विसरै,

माया परम भुलाई, परम भुली दोहागणी, ना फिर अंक समाय रहाउ, भूली फिरै दसंतरी, भूली ग्रह तज जाय, भूली डूंगर थल चढ़ै, पर मैं मन डोलाय, तुरहु विछुनी क्यों मिलै, गर्भ मुठी बिललाय, बिछड़िया गुरमेल सी, हर अस नाम प्यार, साच सहज सोभा कणी, हर गुण नाम आधार, ज्यों पावै त्यों रख तू, मैं तुझ बिन कवन पतार, अखर पढ़ पढ़ भुलिए, भेखी बहुत अभमान, तीर्थ नाता क्या करे, मन मह महल गुमान, गुर बिन किन समझाई है, मन राजा सुनतान, प्रेम पदार्थ पाई है, गुरमुख तत विचार, सा तन आप गवाया।

आ चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसया हूं मैं बिचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाइए आप ना लया जाए गुर की चरनी लग रहो बिचों आप गवाए सच्चे सेती।

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पाव है सुख होए रहाओ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो चलसी।

जानै अपने धिया पूत संजोग नारी देख भगासी नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चलै वित जावणु साकत डोल डोलाय बाहर ढूंढ विगुचियै कर्म है वस्त सुथाय मनमुख हो मैं करमुसी गुरमुख पल्लै पाए साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का एहो तनु अग्नि पास फिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़ै कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोय नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्श ना होय ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होय इं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोय गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोय अगन मरै जल पाई है ज्यो बारक दूधै माय बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराय नानक गुरमुख हर रास मिले।

तू आया सो चलसी अमर सो गुर करतार पी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार डर कर महला सोहणी पक्के कोट हजार हस्ती घोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किस ही नाल ना चलिया खप खप मुए असार सोयना रूपा संतिया माल जाल जंजाल सब जग मह दोही फेरिए बिन नामे सिरकाल पिंड पड़े जियो खेलसी बद फैली क्या हाल पुत्ता देख विगसिए नारी सेज पतार चोआ चंदन लाइए कापड़ रूप शिंगार खेहू खेर लाइए छोड़ चले घर बार महर मलूक कहाइए राजा राव के खान चौधरी राव सदाइए जल बलिए अभमान मन मुख नाम वसारिया ज्यों डब ददा कान हों मैं कर कर जाए सी जो आया जग माही सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे स्वाही गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिये सच नाम सिर छाह पातशाह मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन विसाह मन मुख भोजन पच मोए गुरमुख तरे अथाह श्री राग महला पहला घर दूजा मकाम कर घर बैसना

बिन सतगुरु को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। पे अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। अन दिन भगत करह दिन राती हम मैं मोच काया। जिस स्यो राता तैसो हुए सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाहु लाई गुर शब्दी बीचार। सतगुर सेवे सहज उपजे हम मैं तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उरतार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई। नाम निधान हर मन वसे हम मैं दुख सब जाई। सतगुर शब्द सुनाया हम सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत वश्यल सुख दाता कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सो

रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत न आवई, नाम न लागो पाओ, सुख न सुख न पावी, दुख मह सवै समाय। जे हर हर कीचै बहुत लोचियै, किरत न मेटिया जाय। हर का भाणा भगती मन्या, से भगत पए दर थाय। गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया न जाय। जे सौ अमृत नीरियै, पी बिख फल लागै ताय। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का भाणा कमावंदे, बिख होमै तज बेकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटियै, सिमरत शास्त्र सोधो हो जाय। मिल संगत साधु उभरे, गुर का शब्द कमाए। हर का नाम

गुर कै भाण जे चल है ता अन दिन राच है हर नाई रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उड़ है चहो दिस जाहे, जेता उड़ है दुख घणे नित दाज है तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुपाहे। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देख आए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाऊ, तिन्ना पास ना बैसिए ओना घर ना ग्राउ। कटिए तै नित जालिए ओना शब्द ना नाऊ, हुक्मे कर्म कमावणे पै किरत फराऊ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाऊ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट कर्म कम।

उदार सब नदरी कर्म कमावंदे नदरी बाहर ना कोए जैसी नदर कर देखे सच्चा कैसा ही को होए नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है मनमुख बूझ ना पाई गुरमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए सहजे ही सुख पाई है।

कह पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े, दूजा भाऊ ना जाने। सतगुरु भेटिया निर्मल हुआ, अन दिन नाम बखाने। एको पढ़े एको ना बूझे, दूजा अवर ना जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पलाई,

पंडित पर पर वाद विखाण है बिन गुर परम पलाई लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जा नाउ चेतै ता गत पाई जा सतगुर मेल मलाई सत संगत मह नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुरे अपने बिटो जे हर सेती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सेती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय। पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय। गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे। हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे। बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगते उपजे। सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए। बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा। सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

यह मन निर्मला भय पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया पेटिया गहर गंभीर सच्ची संगत बैसना।

पुजै सच्चे सच्चा नाम। जिन्नी हऊ मैं मार पछाणिया हऊ तिन बलिहारै जाऊं। मन मुख सच ना

जमदर बदे मारिय कूक ना सुने पुकार बिरथा जन्म गवाया मर जम है वारो वार इहो जग जलता देख के भज पए सतगुर सरना सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पथ खोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन श्री राग महला पंजवां जा को मुश्किल अत बने टोई कोई न दे लागू होए दुश्मना साक पे भज खली

करी ना किस होवै काज कित आवै उस पार ब्रह्म तानिह चल होवै राज जा को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे

ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोह वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संघार।

मुख सिमरत तरिया शास्त्र सिमरत वेद चार मोखागर बिचरे तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधी चाय लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ रसातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृत ना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किस कीतो ने अपना जिए ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस भरिया कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यों ज्यों ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां सिरियां का खसम आप

आया सिरे सिर तंदे लाया वेखह की ताया अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो परगट पहार है जापदा सब नावै नो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आपहु तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या निशानिया खसम हो खुथियां फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नु मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सहिया से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणे का रस आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर कर है निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिलिया नाम बखानिए सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हौ सतगुर बिटहु कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लए रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया, रब अपना बिरद संवारिया, कंठ लाए कह रखियोन, लगे ना तत्ती वाऊ जियो, मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छे अड़ा फल पाया, साहा पातशाह सिर कसम तू, जप नानक जीवै नाउ जियो, तुदे आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वर्तदा, जिस पावै तिसै बुझाई जियो, गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चकाया, कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो, गोपी नै गोवालिया, तुदे आपे गोए उठा लिया, हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो, जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिनी दूजा पाहु चुकाया, निर्मल जोत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो, तेरिया सदा सदा चंगे आईया, मैं रात देह बड़े आईया, अन मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, श्री राग महला पंजवा, पै पाए मनाई सोए जियो, सतगुर पुरख मलाया, तिस जेवड़े अवन ना कोए जियो, रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा, अम अबे थाम मिठड़ा, भैन भाई सब सजना, तुद जेहा ना ही कोए जियो, तेरा हुक्मे सामने आया, मैं सत का हल जो आया, नाउ बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो, हाँ गुर मिले एक पछाण दा, दुइया कागल चेतना जान दा, हर इक तै कारे लायोन, ज्यो पावै तिवै नवाहे जियो, तुसी भोगे हो पुंचो हो पाई हो, गुर दी बाण कवाए पैनाइयो, हाँ हो आ माहर पिंड दा, बाने आंदे पांज शरीक जियो, हाँ आया सामै ते हंडिया, पांज किरसान मुजेरे मेहंदिया, कन कोई कढ ना हंगई, नानक बुट्टा कुग गराऊ जियो, हौ वारी घुमा जामदा, इक साहा तुद त्याए दा, उजड़ थेहो वसायो, हौ तुद विटहो कुर्बान जियो, हर इत्थे नित त्याए दा, मन चिंदी सो फल पाए दा, सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा, नौ निद नाम निदान हर, मैं पल्ले बद्दा शिक जियो, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुर अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख विखालिया, मस्तक तर कै हाथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुर सिखा लहंदा पाल कै,

मन दड़ाया, सब मुक्त हुआ सह सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो, सब शिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुन हो अरदास जियो, फूक बजाए सब डिठिया, तुस आपे नयन छडाए जियो, हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रयान दा, सब सुखाली बुठिया, एहो हुआ हले मीराज जियो।

हुक्म पया गर्भास दूजे पहरे रहन कह बन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाइए बन जा रहा मित्रा ज्यों जसुधा कर कान हथो हथ नचाइए प्राणी मात कह सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसह ना जाने मन भीतर धर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रैण कै बन जा रहा मित्रा तन जोबन स्यों चेत हर का नाम ना चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुट है जेत हर का नाम ना चेत है प्राणी बिकल भया संग माया तन स्यो रत्ता जोबन मत्ता पहला जन्म गवाया धर्म सेती वापार ना कीतो कर्म ना कीतो मेत कहो नानक तीजे पहरे प्राणी तन जोबन स्यो चेत चौथे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जां जम पकड़ चलाया बन जा रहा मित्रा किसे ना मिलिया भेत भेत चेत हर किसे ना मिलियो जां जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दुआले खिन मह भया पराया साई वस्त प्राप्त होई जिस स्यों लाया हेत कहो नानक प्राणी चौथे पहरे लावी नुणिया खेत श्री राग महला पहला पहले पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा बालक बुद्ध अचेत खीर पिए खेलाइए बन जा रहा मित्रा मात पिता सुत हेत मात पिता सुत नेहो कनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त न होई बूढ़ी दूजे हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटेंगा हर चेत दूजे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहमिस काम व्यापिया बन जा रहा मित्रा अंदुले नाम ना चेत राम नाम घट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मरहोगे झूठे तीर्थ वरत सुच संयम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबधा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा सरहंस पलथड़े आए जोबन घटै जरुआ जिन्हें बन जा रहा मित्रा आम घटै दिन जाए अंतकाल पछतासी अंबले जां जम पकड़ चलाया सब कुछ अपना कर कर राखिया खिन मह भया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चित हो लिवलाए चौथे पहरे रहन कै बन जा रहा मित्रा बिरद भया तन खीन अखी अंध ना दिसई बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा कौ ताणा गुणी अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुखे आवण जाना खड़ पक्की कुड़ भजे बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओड़क आया तिन साहया बन जा रहा मित्रा जर जरवाणा कन एक रत्ती गुण ना समाणिया बन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साके पाए भगत पै तरना पत सेती जावे सहज समावे।

बन जा रहा मित्रा, हर पाया उधर मंजार, हर त्यावे हर उचरे बन जा रहा मित्रा, हर हर नाम समार, हर हर नाम जपे आराधे, विच अग्नि हर जप जीवया, बाहर जन्म भया मुख लागा, सरसे पिता मात थीवया, जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी, कर हृदय गुरमुख विचार, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हर जपिए कृपा तार, दूजे पहरे रहण कै बन जा रिया मित्रा, मन लागा दूजे पाए, मेरा मेरा कर पालिए बन जा रिया मित्रा, लै मात पिता गल लाए, लावे मात पिता सदा गल सेती, मन जाने खट खवाए, जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा, दित्ते नो लपटाए, कोई गुरमुख होवे सो करे विचार, हर त्यावे मन लिव लाए, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, तिस काल ना कबहू खाए, तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, मन लगा आल जंजाल, तन चितवे तन संचवे बन जा रिया मित्रा, हर नामा हर ना संभाल, हर नामा हर हर कदे ना संभाले, जे होवे अंत सखाई, एहो तन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई, जिसनो कृपा करे गुरमेले, सो हर हर नाम संभाल, कहो नानक तीजे पहरे प्राणी, जे जाए मिले हर नाल, चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, हर चलन वेला आंदी, कर सेवहु पूरा सतगुरु बन जा रिया मित्रा, सब चली रहन विहांदी, हर सेवहु खिन खिन ढिल मूल ना करे हो, जित अस्थिर जुग जुग होवो, हर सीती सदमान हुरलिया, जन्म मरण दुख खोवो, गुर सतगुर स्वामी भेद ना जानो, जित मिल हर भगत सुखांदी, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, सफलियो रहन भगतांदी, श्री राग महला पंजवा, पहले पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, धर पाए ता उदर है माही, दसी मासी मानस किया बन जा रिया मित्रा, कर मोहलत कर्म कमाहे, मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे, जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता पाई सुत बनता, तिन भीतर प्रभु संजोया, कर्म सकर्म कराए आपे, इस जनते वास किस नाही, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, तर पाए ता उदरे माहे, दूजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, पर जवानी लहरी दे, बुरा भला ना पछाणी बन जा रिया मित्रा, मन मत्ता अहमेव, बुरा भला ना पछाणे प्राणी, आगे पंथ करारा, पूरा सतगुर कबहू ना सेवया, सिर ठाडे जम जंदारा, धर्म राय जब पकरस बबरे, तब क्या जवाब करे, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, पर जोबन लहरी दे, तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, बिक संचय अंद अज्ञान, पुत्र कलत्र मोहे लपटिया बन जा रिया मित्रा, अंतर लहर लुभान, अंतर लहर लुभान प्राणी, सो प्रभ चित न आवे, साध संगत स्यो संग न किया, बहु जोनी दुख पावे, सिरजनहार वसारिया स्वामी, एक निमख न लगो ध्यान, कहो नानक प्राणी तीजे पहरे, बिक संचे अंध अज्ञान, चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, दिन नेड़े आया सोई, गुरमुख नाम संभाल तू बन जा रिया मित्रा, तेरा दरगाह बेली होई, गुरमुख नाम संभाल प्राणी, अंते हुए सखाई, एहो मोह माया तेरे संग ना चाले, झूठी प्रीत लगाई, सगली रहन गुदरी अंधियारी, सेव सतगुर चानन होए,
कहो नानक प्राणी चौथे पहरे दिन नेड़े आया सोए। लिखिया आया गोविंद का बन जा रिया मित्रा उठ चले कमाना साथ। एक रत्ती बिनवना देवनी बन जा रिया मित्रा ओनी तकड़े पाए हाथ। लिखिया आया पकड़ चलाया मनमुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेविया से दरगाह सदा सुहेले। कर्म धरती शरीर जोग अंतर जो बोवे सो खात। कहो नानक भगत सोहे दरबारी मनमुख सदा पवात। श्री राग महला चौथा घर दूजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंद अयाणी पेयड़ क्यों कर हर दर्शन पिखे हर हर अपनी कृपा करे। गुरमुख सहोरड़े कम सिखे सहोरड़े कम सिखे गुरमुख हर हर सदा ते आए। सहियां विच फिरे सुहेली हर दरगाह बहां लुड़ाई। लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरखे। मुंद अयाणी पेयड़े गुरमुख हर दर्शन दिखे। व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा पिनसिया हर रतन पदार्थ लादा। हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपे गुरमत खादा। अकाल मूर्त वर पाया अबनासी ना कदे मरे ना जाया। व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया। हर सत सते मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी। एवकड़ै हर जप सुहेली विच सहुरड़ै खरी सुहंदी। सहुरड़ै विच खरी सोहंदी जिन पेवकड़ै नाम संभालिया। सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा ढालिया। हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी। हर सत सत मेरे बाबला हर जन मेल जन सुहंदी। हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो। हर कपड़ो हर सोभा देव हो जित सवर मेरा काजो। हर हर भगती काज सुहेला गुर सत गुर दान दवाया। खंड वर पांड हर सोभा होई एहो दान नार लैर लाया। होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो। हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो। हर राम राम मेरे बाबला फिर मेल तन वेल वदंदी। हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी। जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया। हर पुरख ना कब ही बिनसै जावे नित देवै चढ़ै सो आया। नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सोहंदी। हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी। श्री राग महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निबह तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई ना जाए। मन चिंदे से फल पावह चरण कमल चित लाए। जल थर पूर रहिया बनवारी घट घट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जीओ मित्रा दिक सागर संसारी। चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापे। गुर पूरा भेटै वडभागी आठ पहर प्रभ जापै। आद जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी।
नानक सिख दे मन प्रीतम बिनहार झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निश्चल मल्ली हर दर सेवे अलख अपेवे निश्चल आसन पाया तह जन्म ना मरन ना आवन जाना संसार दुख मटाया चित्रगुप्त का कागद फारिया जमदूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लगे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो।

मन वांछत फल देत है स्वामी, जी की बिरथा सारी, नाथ के नाते सब कै साथी, जप जुए जन्म ना हारी है, नानक की बेनंती प्रभ पह, कृपा कर पव जल तारी है, दखना धूड़ी मजन साधखे, साई थिए कृपाल, लद्दे हब्बे थोकड़े, नानक हर तन माल संत, सुंदर स्वामी ताम।

जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिजाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ न माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं पोहया दखना साई नाम अमोल कीम न कोई जान दो जिन्ना भाग मथाहे से नानक हर रंग

नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे, काम क्रोध लोभ मारिया। कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपालदा, घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है, तिस बिन अवर ना कोए। जो मोहे माया चित लाइंदे, से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर ना कोए। हर गुर सरनाई पाईए बनजारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना मिन पाईया, हर किने न पाया नाउ। विच हों मैं कर्म कमावंदे, ज्यों वेसवा पुत निनाउ। पिता जात ता होइए, गुर तुठा करे पसाउ। वड भागी गुर पाया, हर एलस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया, हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ, गुर पूरै नाम दरड़ाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है, तब लग नाम त्याए। चल दिया नाल हर चल सी, हर अंते लए छडाए। हों बलिहारी तिनको, जिन हर मन उठायाए। जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो, से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम त्याए। मन हर हर प्रीत लगाए, वड भागी गुर पाया। गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आप उपाए दा, हरे आपे देवे ली। हरे आपे परम पलाए दा, हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है, से विरले के ई के। हौ बलिहारी तिनको, जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया, मन हर हर बुठड़ाहे। मन हर हर जपन करे, हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाईए कित भत। गुरपूरा सतगुर भेटिए, हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है, हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम वसाहु है, हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम त्याया, रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्याहु हो हर प्रभ सत, गुर बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया, से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वणजारिया मित्रा, गुर हर हर नाम परगास। तन तन वणज वापारिया, जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले, ते आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया, जिन्ना आप तुठा गुण तास। हर त्याव हो सास ग्रास, मन प्रीत लगी तिन्ना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग की वार महला चौथा। सलोका नाल सलोक महला तीजा, रागां विच श्री राग है। जे सच तरे प्यार, सदा हर सच मन वसै। निश्चल मत अपार, रतन अमोलक पाया। गुर का शब्द बीचार, जेवा सच्ची मन सच्चा। सच्चा शरीर अकार, नानक सच्चै सतगुर सेवै। सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब तात है, जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया, वेखण सुनण ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै, अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतियां, सोई सच्चा दे पौड़ी।
हर इको करता एक इको दीमान हर हर इक सैदा है अमर इको हर चित धर हर तिस बिन कोई नाही डर भ्रम भव दूर कर हर तिसै नु सलाहे जे तुद रखै बाहर कर हर जिसनो होए दयाल सो हर जप भव बिकम तर सलोक महला पहला दाती साहिब संदियां क्या चलै तिस नाल इक जा गंदे नाल हन इक ना सुतिया दे उठाल महला पहला सिदक सबूरी साधका सबर

लख चौरासी फेर पया मर जम्मै होए खुआर। सतगुरु की सेवा सो करे जिसनो आप कराए सोए। सतगुरु विच नाम निदान है कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द स्यों तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले ना विछड़ै सहज समावै सोई। महला तीजा सो भगवती जो भगवंत जान है। गुर प्रसादी आप पछाण धावत राखै इकत घर आण। जीवत मरै हर नाम बखाण ऐसा भगवती उत्तम होए। नानक सच समावै सोए महला तीजा। अंतर कपट भगवती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल धोवे मन की झूठ ना जाए। सत संगत सिंह बाद रचाए हर दिन दुखिया दूजै पाए रचाए। हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए। पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर ना सुवाही। सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही। जिनको हुआ कृपाल हर से सत

भव जल उतरे पार। नानक गुरमुख सच संभाव है, सच नाम उधार पौड़ी। हर जां थल महियल भरपूर, दूजा नाही कोई। हर आप बह करे न्याओ, कूड़ियार सब मार कढोए। सचियारा दे वड्याई, हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करहो उस्तत, जिन गरीब अना

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किस कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जा की दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह तार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम फलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की पहरियां कै कर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मदना एहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछतावहगा मूड़िया तू कमल कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचर अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापै रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तौ पंच प्रगट संतापै जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम न अरादया उछलिया काम काल मत लागी तौ आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रय मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिख भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तौ पाछे पछताना निकुट्टी दे देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझे थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक

तुम जो नायक आचो हो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर आराध्य मोको विचार देहू रवदास समदल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वड भागी हर नाम ते आया गुर पूरे हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चले जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले गुर पूरे हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पल्ले जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया।

प्रीतम दसे तिसकै हौ वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौ सतगुर विटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हौ सतगुर विटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब एका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौ सतगुर विटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवै बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ भोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश जहां तू

आस पिया सा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। यो बारक पी खीर अगावे ज्यो निरतन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यो हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यो अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यो हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते

है परापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना जिसह परापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो हर एक सहाथ आया वरसाणी बहुतेरे किस लग मुक्त भय कनेरे नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जियो माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरे जन्म पदार्थ गहर गंभीर है।

संगराता प्रभ प्रत पाले सेवक सुखदाता पाणी पक्का पीसो सेवक कै ठाकुर ही का आहार जियो काट सिलक प्रभ सेवा लाया हुक्म साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावै जो साहिब पावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है जो किस ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर।

संग जोत मलाया, कहो नानक भ्रम कतेक वाड़ा, बहुड़ ना होई है जो ला जीव, माज महला पंजवा, तिस कुरबानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया, वार वार जाई तिस विटहु, जो मन तन तुद आराधे जीव, तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले, मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मेल सो प्रभ लादे जीव, से बड भागी जिन तुम जाने, सब कै मदे अलिपत निर्बाणी, साध कै संग उन पौ जल तरिया, सगल दूत उन साधे जीव, तिनकी शरण परिया मन मेरा, मान तान तज मोह अंधेरा, नाम दान दीजै नानक कौ, तिस प्रभ अगम अगादे जीव, माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम होवा असथूली, तू जल निध तू फेन बुदबदा, तुद बिन अवर ना पालिए जीओ, तू सूत मणिये पी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद

देखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उधारी किन बिख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए कर जोड़ एक बिनो करीजै कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै नानक कहो प्रभ भय कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जी।

सतगुर का दर्शन पाए जियो, सुख भया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम बखाना, जल थल नीर भरे सरस भर, बिरथा कोई ना जाए जियो, दया धारी तिन सिरजनहारी, जी जंत सगले प्रतपारी, मेहरवान किरपाल दयाला, सगले तृप्त अगाए जियो, वन त्रिण त्रिपवन की तुन हरिया, करनहार खिन पीतर करिया, गुरमुख नानक तिसै आराधी, मन की आस पुजाए जियो, माज महला पंजवां, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा

मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख।

ई प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टीटत गुर दरसाया जियो, अगम अगोचर किश मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निदाना, सुख सहज हर नाम बखाना, होए कृपाल स्वामी अपना, नाव नानक कर मह आया जियो, माज महला पंजवा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी, तुमरे कर्तव तुम ही जान हो, तुमरी ओट गोपाला जियो, गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे।

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपी जीव, सब किस बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहु मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जीव, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्याई, जन्म

मिल गावह गुण अगमय पारी, गावत सुनत सबे ही मुक्ति, सो त्याय जिन हम किए जियो, जन्म जन्म के

नाम जपत सर्व सुख पाई है, सब भओ बिनसै हर हर त्याई है, जिन सेवे आसो पार ग्रामी, कार्य सगले थीए जियो, आए पया तेरी सरनाई, ज्यों भावै त्यों लैह मलाई, कर कृपा प्रभ भगती लाभ हो, सच नानक अमृत पिए जियो, माज महला पंजवां, पये कृपाल गोविंद गुसाई, मेघ वरसै सबनी थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठांड पाई करतारी जियो, अपने जी जंत प्रतपारी, ज्यों बारक माता संभारी, दुख भंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारी जियो, जल थल पूर रहया मेहरवाना, सद बलिहार जाइय कुर्बाना, रैन दिन सतिस सदा त्यानी, जे खिन मह सगल उदारे जियो, राख लिए सगले प्रभ आपे, उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो, माज महला पंजवां, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे।

हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नदर निहाली, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संतां से तीरंग न लाए, साकत संग विकर्म कमाए, दलाब देखोई अज्ञानी।

नानक दान किया दुख भंजन रत्ते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड।

0: आया
1: सगल मनोरथ पूरन होए कदे ना होए दुखाला जियो। माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया जल थल महियल दह दिस वरसाया शांत भई बुझी सब तृष्णा आनंद भया सब ठाई जियो सुख दाता दुख भंजन हारा।

तुद त्याई जीओ। माज महला पंजवा सभ्य सुख पये प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे। सहज समाध लगी लिव अंतर, सोरा

गुर के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करतै, दुख का डेरा टाहया जीओ, मन पन वसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसै कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जीओ, जो किछ करे सो आपे आपै, बुद्ध सियाणप किशु ना जापै, आपणिया संतां नूं आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ, चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वापारू, सहज आनंद गावह गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ, माज महला पंजवां, सो सच मंदर जित सच त्याई, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई, सा धरत सुहावी जित वसह हर जन, सच्चे नाम विटोह कुरबाणो जीओ, सच वडाई कीम न पाई, कुदरत करम न कहना जाई, त्याए त्याए जीव है जन तेरे, सच शब्द मन माणो जीओ, सच सलाहन वड भागी पाई है, गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

मद प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचै साधर वाला देह दान नानक जन मांगै सदा सदा हर त्याई जियो माज महला पंजवा एथे तू है आगे आपे जी जंतर सब तेरे थापे।

तिन्हीं सुख पाया सो जन्म न जूए हारी जीव नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गाव हो दिन राती सफल एहा है कारी जीव दृष्ट तार अपना दास सवारिया घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया एक सवेण होर दूजा नाही बाबा नानक एह मत सारी जीव माज महला पंजवा मन तन रत्ता राम प्यारी सरबस दीजै अपना वारी आठ पहर गोविंद गुण गाई है।

तरी जय सागर कटिए जम की फासा जीव। चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा। काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव। पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी। नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव। माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया। कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ऐसा भली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लग है जिस मीठा जीओ। सब परोई इकत धागे, जिस लाए लए सो चरनी लागे। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन।

निर्मल, जिन देखे सब उतर कलमल, नानक नाम त्याए त्याए जीवै, बिनसिया भ्रम भउ तीठा जीओ, माज महला पंजवां, झूठा मंगण जे कोई मांगे, तिस

मन लागी गुण गावै अन दिन नित जागी बाहां पकड़ तिस स्वामी मेले जिस कह मस्तक लहना चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांच है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइए जिस सिमरत वार निह चल पाइए नानक कहो प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां महला पहला।

माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया गुरमति परगास हो आजी अन दिन हर गुण गावणिया रहाऊ।

करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साथ मिले ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणी।

लहे सो लागे गुरमुख सच कमावणिया जिस आप भुलाए सो किथे हाथ पाई पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाई जिन सतगुर मिलिया से वड भागी पूरे कर्म मिलावणिया ते यड़े तन अन दिन सुती कंतव सारी अवगण मुक्ति।

किस नदर न आवे। मन मुख पाप पचावने इक रंग राते जो तुद आप लिवलाई। पाए भगत तेरे मन पाई, सतगुर सेवन सदा सुख दाता। सब इच्छा आप पुजावने हर जियो तेरी सदा सरनाई। आपे बख्शे दे वडियाई, जम काल तिस नेड़ ना आवे। जो हर हर नाम ते आवणिया।

तू आपे सच बुझा बनिया जिन सच जाता से सच समाणी हर गुण गावे सच बखाणी नानक नाम रते बैरागी

पाए सिंगार बनाई गुर प्रसादी महल घर पाई अन दिन सदा रवै दिन राती मजीठे रंग बनावणिया सबना फिर वसै सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा कर किरपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुता।

गुर कै शब्द परख परखाया, जिन सच पल्लै सच बखान है, सच कसवटी लावणिया, हो वारी जीओ वारी, गुर की बाणी मन वसावणिया, अंजन माही निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मलावणिया, रहाउ किस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अति अगम अपारा, गुरमुख हो ऐसोई पाई, आपे बख्श मलावणिया, मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई, गुर प्रसादी सच चित लाई, सचो सच वरतै सबनी थाई, सच्चे सच समावणिया, वे परवाह सच मेरा प्यारा, किल विख अवगुण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा त्याई, भै भाए भगत दृढ़ावणिया, तेरी भगत सच्ची जे

कह आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविध माया चौथी पौड़ी गुरमुखी उची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सहज समावे गुरमुख करनी सच्चे सेवे सच्चे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख होवे सो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब सरण तुम्हारी आपे धर देख कच्ची।

या भरपूर नानक आपे आप वरतै गुरमुख सोजी पावणिया। माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलै किनै चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवै दर सच्चै शब्द बजावणी।

कहलाया। तुद सलाहे नार जा कबहू सच्चे नावे की भुख लावणिया। एको वेखा अवर ना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया।

मन वसाई आंदिन सदा रहे पै अंदर पै मार परम चकावणिया परम चकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे परमे भूला।

माज महला तीजा आपे रंगे सहज सुपाई गुर कै शब्द हर रंग चढ़ाई मन फन रत्ता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावणिया हौ वारी जी ओ वारी निरपो मन वसावणिया गुर किरपा ते हर निरपो त्याया बिख पौ जल शब्द तरावणिया रहाउ मन मुख मुग्ध करह चतुराई नाता धोता थाए ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया मन मुख अंधे किशु ना सूजै मरन लखाए आए नहीं बूजै मन मुख कर्म करे नहीं पाई बिन नामै जन्म गवावणिया सच करनी शब्द है सार पूरा गुर पाईऐ मुख द्वार अन दिन बाणी शब्द सुनाई सच राते रंग रंगावणिया रसना हर रस राती

तू पाई गुर प्रसादी हो मैं जाई नानक नाम वसै मन अंतर दर सच्चै शोभा पावणिया माज महला तीजा सतगुर सेवियां वड्डी वड्याई हर जी अचिंत वसै मन आई हर जी ओ सफल ओ बिरख है अमृत जिन पीता तिस तिखा लहावणिया हों वारी जी ओ वारी सच संगत मेल मनावणिया हर सत संगत आपे मेले गुर शब्दी हर गुण गावणिया रहाउ सतगुर सेवी शब्द सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया हर निर्मल हों मैं मैल गुआई दर सच्चै शोभा।

गुरमुखो वैसो इक सिंह निभलाए, दूजा भरम गुर शब्द जलाए। काया अंदर वणज करे वापारा, नाम निधान सच पावणिया। गुरमुख करनी हर कीरत सार, गुरमुख पाए मोख द्वार। आनंदन रंग रत्ता गुण गावे, अंदर महल बुलावणिया। सतगुर दाता मिले मिलाया, पूरे भाग मन शब्द वसाया। नानक नाम मिले वडियाई, हर सच्चे के गुण गावणिया। माज महला तीजा, आप मंझाए ता सब किछ पाई। गुर शब्दी सच्ची लिवलाई, सच वणंजह सच संग्रह।

तेरा शब्द वड़याई देवनिया रहाउ वेला वखत सब सुहाया जित सच्चा मेरे मन पाया सच्चे सेवया सच वड़याई गुर कृपा ते सच पावनिया पाओ भोजन।

निर्मल बाणी शब्द वखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जानणिया, माज महला तीजा, तेरिया खाणी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पलाणी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोए ना पावणिया, हौ वारी जियो वारी, हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भगती पाईऐ, सहजे मन वसावणिया, रहाउ सतगुर सेवे ता सब किश पाए, जेही मनसा कर लागे तेहा फल पाए, सतगुर दाता सबना वथू का, पूरे भाग मलावणिया, इहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीरथ दसंतर भवे अहंकारी, होर वधेरे होमै मल लावणिया, सतगुर सेवे ता मल जाए, जीव तमरे हर सिउ चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया, बाज गुरु है अंध गुबारा।

पात्रे भिद माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार न पावणिया, आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जल राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया, गुरमुख रिद सिद सत संयम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओ पत होवे। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हौ वारी जीओ वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतर।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाईए नाही, शब्द मेल मनावणिया, गुरमुख अलिप्त रहै संसारी, गुर कै तकिए नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिन लांदी, बिन गुर शांत

लाई। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझते बाहर किश ना होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा, अमृत भरे तेरे भंडारा।

अमृत पीवे जिसनो आप पी आए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहया सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया, आपे आप निरंजन सोई।

सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया इसना अगन जले संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्मे पत गुआई अपनी बिरथा जन्म गुआवणिया गुर का शब्द को विरला बूझे आप मारे तात्रे पवन सूझे।

माया मोह इस मनह न चाई, अंतर कपट दुख पावनिया, गुरमुख भगत जा आप कराई, तन मन राता सहज सुपाई, बाणी वज्जै शब्द बजाई, गुरमुख भगत थाई पावनिया, बहु ताल पूरे बाजे बजाई, ना को सुने ना मन वसाई, माया कारण पेड़ बंद नाचै, दूजै पाए दुख पावनिया, जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संयम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर त्याई, एहा भगत हर पावनिया, गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाई, गुर चरणी चित लावनिया, माज महला तीजा, सच्चा सेवी सच सालाही, सच्चै नाही दुख कब ही नाही, सुख दाता सेवन सुख पाइन, गुरमत मन वसावनिया, हौ वारी जीओ वारी, सुख सहज समाग लगावनिया, जो हर सेवह से सदा सोह, सुबा सुरत सुहावनिया, रहाउ सब को तेरा भगत कहाई, सेई भगत तेरे मन पहाई, सच वाणी तुदै सालाहन, रंग राते भगत करावनिया, सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै ता चूकै फेरा, जा तुद भावै ता नाही रचावै, तू आपे नाउ जपावनिया, गुरमती हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक सस्यों डिव लागी सदही, हर नाम मन वसावनिया, भगत रंग राते सदा तेरे चाई, नौ निध नाम वसया मन आई, पूरे भाग सतगुर पाया।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे। हौ मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे। मन निर्मल अन दिन भगती राता भगत करे हर पावणिया। हौ वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। इन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया। रहाओ आपे करता कारण कराई जित पावै तित कारै लाई। पूरै भाग गुर सेवा होवै गुर सेवा ते सुख पावणिया। मर मर जीवै तां किछ पाई गुर प्रसादी हर मन वसाई। सदा मुकत हर मन वसाई सहजे सहज समावणिया। बहु कर्म कमावै मुक्त ना पाई दे संतर भवै दूजै भाई खुआई। बिरथा जन्म गवाया कपटी बिन शब्दै दुख पावणिया। धावत राखै ठाक रहाई गुर प्रसादी परम पद पाई। सतगुर आपे मेल मलाई मिल प्रीतम सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाई दूजै भाई बिरथा जन्म गवाई। आप डुबे सगले कुल डुबे कूड़ बोल बिख खावणिया। इस तन मह मन को गुरमुख देखै भाई भगत जा हौ मैं सुखै। सिद्ध साधक मोल धारी रहे लिवलाई तिन पी तन मह मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई होर के करे कीतै क्या होई। नानक जिस नाम देवै सो लेवै नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा इस गुफा मह अखुट भंडारा इस विच वसै हर अलख अपारा। आपे गुपत प्रगट है आपे गुर शब्दी आप मजावणिया। हौ वारी जियो वारी अमृत नाम मन वसावणिया। अमृत नाम महारस मीठा गुरमती अमृत पी आवणिया। रहाओ हौ मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया। बिन शब्दै नाम ना पाई कोई गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेतरी पाया अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मान।

संधि नराती गुरमती शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हाथ कुंजी होरत दर खुलै नाही गुरपूरे भाग मलावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हौ मैं मार बंधन सब तोड़े गुरमुख शब्द सुहावणिया हौ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावे गुरमुख नाचै

पाड़ बोझ मानव सामणिया गुरमुख पढ़ है हर नाम सलाह है दर सच है सूबा पावणिया रहाउ अलक अपेयो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर पीटै नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूटे गुर शब्दी गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मैं राता बिख ही माही पचावणिया हौ हौ करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझ ते बाहर किशु ना हुए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश शिंगार बढ़ाई मन मुख आंदे ऐसे।

शब्द पुछाता अन दिन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावनिया सब मैं वरतै इको सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक नाम रते जन सोहै कर किरपा आप मलावनिया माज महला तीजा मनमुख पढ़े पंडित कहावे है दूजै पाए महा दुख पावे है बिख्या माते किस सूजै नाही फिर जूनी आवनिया हौ वारी जियो वारी हौ मैं मार मनावनिया गुर सेवा ते हर मन वसिया हर रस सहज पी आवनिया रहाउ वेद पढ़े हर रस नहीं आया वाद वखाणे मोहे माया अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावनिया अकथो कथिए शब्द सुहावे गुरमती मन सचो पावे सचो सच रवह दिन राती इहो मन सच रंगा मणिया जो सच रत्ते तिन सचो पावे।

हर रस चख साध पावणियां, हर रस चख है से जन निर्मल, निर्मल नाम त्यावणियां रहाउ। सो ने कर्मी जो शब्द बिचारी अंत

हो जलाई सो हर सिउ चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ। देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त्र जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुरपूरै नाम त्यावणिया पे यड़ै तन परम फुलाणी दूजै लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपनै सुख ना पावणिया पे यड़ै तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले पिरकै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चेतना आवे बिन नावे बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिले शब्द पछाणे नानक नाम मिलया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपर।

रख मन तन पावणिया। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया। रहाव तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा। थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरतावणिया। सगल मनोरथ तू देवनहारा, भगती पाए परे पंडारा। दया तार राखे तुद से, पूरा कर्म समावणिया। अंधकूप ते कंडै चाड़े, कर किरपा दास नदर निहाले। गुण गावे है पूर्ण अबनासी, कह सुन तोट ना आवणिया। एथे उथे तू है रखवाला, मात गर्भ में है तुम ही पाला। माया अग्न ना पो है तिनको, रंग रते गुण गावणिया। क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर ना जानणिया। जिसको तू प्रभ पया सहाई,

ऊंच अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवा कर दूजा, नित नित दयो संभाली है, मूल ना मनो विसारी है, रहाओ संता संगत पाई है, जित जम कह पंथ ना जाई है, तोसा हर का नाम लै, तेरे कुलह ना लागे गाल जियो, जो सिमरन दे साई है, नरक ना से पाई है, तत्ती वाओ ना लग गई, जिन मन बुठाया ए जियो, से सुंदर सोहने, साध संग जिन बहने, हर तन जिनी संजिया।

लाख कमलावती उपजह नाही दाम। हर लाह ना मिलिए साजन कत पाइये विश्राम। जित घर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से।

जिसका नेह चल ताम चेत गोविंद अरादिय होवे आनंद घना संत जना मिल पाईय रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तल मई अल पूरिया रव्या विच वणा सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मणा।

तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वादिया जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओह पलच पलच सगली मुई झूठै तंदै मोह इक सहर के नाम बिन अगै लइह खोहे दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो परापत होए वैसाख सुहावा तां लगे जां संत भेटै हर सोए हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवन हर सज्जन दाम।

हेठ रंगीला तिस धनी जिस कह भाग मथन असाड़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस दुइये भाइव गुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखियास रैण मिहाणी पछताणी उठ चली गई निरास जिनको साधु भेटिए सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरत पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हों तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे ना देनी भेत छड खड़ोते खिने माहि जिन स्यों लगा हेत हाथ मरोड़ै तन कपे

मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मलावे माई संत सहाई प्रेम के हौ किन कै लागा पाई बिन प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी नाही जाई जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाई आप त्याग बिनती करहे लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह न जाए प्रभ विण दूजा को नहीं

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरो वह रोज कीता किशु ना हो गई लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक हो।

तिनकी शोभा क्या गणी, जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंहु संग साध सही लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहु उतरे से जम के बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ न जनमड़िया पोख तुखार न व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई मिल

फलगुण आनंद उपार्जन हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाई सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए इच पुन्नी वड भागणी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए हर जिहा अवर ना दिसई कोई दूजा लवै ना लाए हलत पलत सुवारियों निश्चल दितियन जाई संसार सागर तेरा।

आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो हो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख ना वसन पैण हर फिर बिन चैन ना पाईए खोज दिते सब गैन आप कमाणे विछड़ी दोष ना काहू देन कर कृपा।

बेनंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सुह सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुरै पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार सेवा सा तिस भावसी संतां की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आद जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने।

साधन सद सदा सबना का बख्शिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिकीन जिंद गुर शब्दी आराधिये जपिये निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइये परमेश्वर बेअंत जिस मन वसे नारायणु सो कहिये भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवे जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रैन जिस ना विसरे सो हरिया होवे जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थां हर ऊट गई मन अंदरी जप जप जीवा नाम कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू राख है त्यों रहा तेरा दिता पैना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बनासन तम हरन ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिया नानक एहो सुआव सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाव वार माज की तथा सलोक महला पहला मलक मरीद तथा चंद्रहड़ा सोहिया की धुनी गावणी।

जिन रच रचिया तिसह न जाने, अंधा अंध कमाई जा भजै ता ठीकर होए, घाड़त घड़ी ना जाई। नानक गुर बिन नाही पत, पत बिन पार ना पाई। महला दूजा, दिन दे थाम हूं दिता चंगा, मनमुख

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती परे भंडारा निर्मल नाम मनिया गर सच्चै सचियारा।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्भ भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां होवह तीनवा सुम होवह दुध कीओ सगली धरती सक्कर होवे खुशी करे नित जीओ।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है इवें जापे पाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला अग्गी पाला कपड़ होवे खाना होवे वाऊ सुरगै दिया मोहनिया इस्त्रियां होवन नानक सबो जाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जाने सो कहिए देवाना आप ना पछाने कलह बुरी संसार वादे खपी है विणना में वेकार परमे पची है राह दो है एक जाने सोई सिजसी कुफर गो कपराने पया धजसी सब दुनिया सुबहान।

हुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज दी चार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताखती। सलोक महला पहला जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवार सन की सारा चिथिया। कान लया तन झाड़ दोए पुड़ चल।

फेर अब बादशाहा अफजू खुदाई, एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला, ना दादे देहांदे आदमी, ना सपत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला, ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो, अन पौन फिर ना कोई, एक तुई महला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला, प्रंदे ना ग्रहाजर, द्रखत आब आस कर, देहांत सुई।

देखाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाही एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम त्याई है दूजी कार लग जन्म गवाई है विण नावे सब विस पेंजे खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा सलाहे अत सिंह जाई है सलोक महला पहला तुद भावे ता वावह गावह तुद भावै जल नावै जां तुद भावै।

है। जहाँ तुद भावे ता होवे राजे, रस कस बहुत कमावे। जहाँ तुद भावे तेग भगावे, सिर मुंडी कट जावे। जहाँ तुद भावे जाहे दसंतर, सुन गल्ला घर आवे। जहाँ तुद भावे नाहिर चावे, तुद पानी तू भावे। नानक एक कह बेनंती, होर सगले कूड़ कमावे। महला पहला, जा तू वड्डा सब वडियाईया, चंगा चंगा होई। जा तू सच्चा ता सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात। हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप पौड़ी। सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है। सतगुर हुए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है। मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है, सच्चे दै दर जाए सच चवाई है। सच्चा अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सदा सचियार सच समाई है। श्लोक महला पहला, कल काती राजे का साई। धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा। दिसै नाही कह चढ़िया, हों भाल विकुन्नी होई। अंधेरै राहो ना कोई, विच हों मैं कर दुख रोई। कहो नानक किन बिदगत होई। महला तीजा, कल कीरत प्रगट चानन संसार। गुरमुख कोई उतरै पार, जिसनो नदर करे तिस देवै। नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी, भगतां तै संसारिया, जोड़ कदे ना आया। करता आप अभुल है, ना भुलै किसै दा भुलाया। भगत आपे मेलियन, जिन्नी सचो सच कमाया। संसारी आप खुआयन, जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया। चलन सार ना जाननी, काम क्रोध विस वधाया। भगत करन हर चाकरी, जिन्नी अन दिन नाम त्याया। दासन दास होए कै, जिन्नी विचों आप गवाया। ओना खसमै।

उजली सच्चा शब्द सुहाया सलोक महला पहला सबाही सालाह जिनी ते आया एक मन से पूरे साह वक्त है ऊपर लड़ मोए दूजा बहुते राह मन किया मती खिंदियां बहुत पए असगाह गोते खाए ना निकलह तीजै मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकियां खादा हुए सुआह पी खाने स्यों दोस्ती चौथै आई ऊंग अखी मीत पवार गया पी उठ रच्यो नवाद सह भरिया की पिड़ बद्दी सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन बसै सच्चा नावण।

पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हों मैं जाई है लईन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर इस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्मवंती सालाया नानक कर गुर पीर चौथे पहर सबहा कै सुरतियां उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उतै अमृत वंडी है करमी हुए पसाव कंचन काया कसी है।

ठगियो ठग आइए जाइए तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइए। सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान।

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदै ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिय पाई है। गुर प्रसादी बुझ सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन करमा बाहरी महला पहला, मत पंखे रू किरत साथ। कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल, कब उच्ची परीत। नानक हुक्म चलाई है।

खट दर्शन कह भेख किसे सच समावना सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना मन्ने नाउ बसंख दरगाह पावना खालक कौ आदेश ताडी जावना नानक।

तृप्तिया सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा नेह पलंग तस जन्मस

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल बदौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास।

नानक बख्शे बख्शी है, नाही ता पाही पाही। महला पहला। नानक बोलन चखना, दुख छड मंगी है सुख, सुख दुख दुए दर कपड़े। पहर है जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है, तिथे चंगी चुप पौड़ी। चारे कुंडा देख अंदर पालिया, सच्चा पुरख अलख सिरज निहालिया। उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया, सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया। पाया रत्न कराह दीवा बालिया, सच्चा शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया। ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया, नाम भुला जग फिर बेतालिया। सलोक महला तीजा, पै विच जम्मै पै मरै,

इत के होम जग सद पूजा पै कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नहातै जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक ता पत जानी है जा पत रखे सोए पौड़ी।

चढ़े सुआया, नानक मंगे दान जो तुझ पाया। सलोक महला दूजा, दीख्या आंख बुझाया, सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है। जिन गुर नानक देव महला पहला, आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे। कह कह कतन

पै पौ राख्या भाई सवार रहाउ, पै तन अगन पखै पै नाल, पै पौ कड़ी है शब्द सवार, पै बिन काड़त कच न कच, अंधा सच्चा अंधी सट, बुद्धि बाजी उपजै चाऊ, सहस सियाणप पवै ना ताऊ, नानक मन मुख बोलन वाऊ, अंधा अखर वाऊ दवाऊ, गौड़ी महला पहला, डर कर कर डर डर डर जाई, सो डर केहा जित डर डर पा।

ना डूबै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाए हंस हेत आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका को

कोई कोई सब को तेरा तू सबना का सोई जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किछ कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भय करनी कामन कर मन लय साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद बखान, पीतर होंडी वस्त ना जाने, हो ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊ, आप

गुरमुख मुख तो बंद ना पाए, शब्द बीचार छुटे हर नाई। तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश। सांझ बिहाग तकह आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट। बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट। साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्ये पूरे हर लोग। मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनकै लागो पाए। गौड़ी महला पहला, काम क्रोध मा

कुंडा पड़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया।

दरगाह मार सच सलाही धन गुरुद्वार नानक दर घर एक अंकार गौड़ी महला पहला उल्टे ओ

मान्य अमृत रस पीजे रहाउ जन्म जीत मरण मन मान्या आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कर करते जानिया जत सत।

उठाऊं। नानक गुरमत सहज सुमाऊं, गौड़ी महला पहला। सतगुर मिले सो मरण दिखाई, मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई, मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ, सतगुर मिले ता दुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे, जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा, गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा। कर्म मिले जम का पौ मूचा, गुर मिले मिले अंक समाया। कर कृपा कर महल दिखाया, नानक हों मैं मार मलाया। गौड़ी महला पहला।

गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांधे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले भ्रम दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ भी चार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कै हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माही निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लभ लोभ मुझ कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारु, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों धारी उपर चारु, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ ना आवे वारी रहाऊ।

होगत सह का पाना रहाउ। साहू हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बन जारी। जियो पिंड सब रास तिसह की मारे आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना। क्यों राखो कर बार मना मार है लूट है नीत नीत। किस आगे करी पुकार जना।

तातना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताही मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामन लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पा

मूड़े फिर पाछ पछताहे रे रहाउ। अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए, अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए। आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ होए।

गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन वसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार राम की तेरा नाम बखर वापार जी रहाओ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले दर्श

आए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखी है करते का हुए बिचारु तित कर गाव हो सोहिला शिवर हो सिरजनहारु तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हों बारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन आशीषड़िया ज्यो होए साहिब स्यो मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे आवन राग गौड़ी गवार री महला तीजा चौपदी।

ले शब्द पछाणे सतगुरु कह पहे ब्रह्म पहु जाई कह राचे सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसे सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई शब्द सल

होए। मन निर्मल वसै सच सोए, साच वसै साची सबकार। उत्तम करनी शब्द बीचार, गुर ते साची सेवा होए। गुरमुख नाम पछाणै कोए, जीवै दाता देवनहार। नानक हर नामे लगै प्यार, गौड़ी गवार री महला तीजा। गुर ते ज्ञान पाए जन कोए, गुर ते बूझै सीजै सोए। गुर ते सहज साच बीचार।

जो पांडा हुए ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौरी ग्वारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुरु पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाओ एक गावे है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत ना होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हों मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हों मैं विच सब जग बहुराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हों मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

पोतै पुन तिन हम मैं मारी। नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाए। गुर शब्द मारन मन

साई गुरमुख भगत हर नाम समाई आपे दात करे दातार पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार नानक नाम रते तिन को जयकार गौड़ी ग्वारी महला तीजा।

सब कोई, गुर शब्द समावै बूझै हर सोई, सुन सुन वेखै शब्द मलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी गुआरी महला तीजा, मनमुख सूता माया मोहे प्यार, गुरमुख जागे

ते बूझै जन कोई रहाउ। असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। विरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कै कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महल्ला।

नाम जपो हो पवजल उतरो हो पार रहाओ परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाय मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्य सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही। तेरा

महला तीजा सब जग काल बस है बांधा दूजे पाई हम मैं कर्म कमावंदी मन मुख मिले सुजाई मेरे मन गुरचरणी चित लाए गुरमुख।

हर हर लिख पाया शोभावंती नार है। गुरमुख गुण गाया देव कड़ै गुण संभलै सोहरे वास पाया। गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया। ससुरह पेयै पिर वसै कहो कित बिद पाईऐ। आप निरंजन अलख है आपे मिलाइए रहाउ। आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आइय। वडभागी सतगुर मिले मुख अमृत पाइए। हौमै दुबदा बिर सजाए सहजे सुख समाइए। सब आपे आप वरतदा आपे नाए लाइए। मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान ज्ञानी। सतगुर सेवा ना करै फिर पछताणी। गर्भ जूनी वास पाए दे गर्भे गल जानी। मेरे करते एवं पावदा मनमुख परमाणी। मेरा हर प्रभ लेख लखाया तुर मस्तक पूरा। हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है हर बंदप बीरा। हर हर बख्श मलाए प्रभु जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया। हर तत् बीचारा मत मलीन प्रगट पई जप नाम मरारा। शिव सकत मटाईया चूका अंधियारा। तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा। हर कित बिद पाईऐ संत जन हो जिस देख हो जीवा। हर बिन चसा ना जीवती गुर मेले हो हर रस पीवा। रहाओ हौ हर गुण गावा नित हर सुनी। हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया। मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी। जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर राय है हम अवगण यारे। पापी पाथर डूब दे गुरमत हर तारे। तू गुण दाता निर्मला हम अवगण यारे। हर शरणागत राख ले हो मूड मुग्ध निस्तारे। सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन त्याया। सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया। हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया। जन नानक मंगै धूड़ तिन जिन सतगुर पाया। गौड़ी गुआररी महला चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया। मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी। हर भज मन मेरे कर भौजल तू तारी। रहाओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी। पर त्रै त्याग करी ब्रह्मचारी। मैं मूरख हर आस तुम्हारी।

जां हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाते जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखै माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआर री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कनी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलिया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ त्यागे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गुआर री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहया बनवारी हर आपे तप तापै लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत धारा हर अमृत आप पी आवनहारा।

पणंजह रंग स्यों जे आप दयाल हुए देह हम बन जारे राम के हर वणज करावे दे रासरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जे है बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

कर आसा वड्डा होए तन खाट दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूरख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझह वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लग है जा हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वड्याई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार नहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढ़ाई जन नानक हर का दास है हर की वड्याई गौड़ी गुआर भी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोते उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए।

सौदागरी सौदागर धावे धन खट आसा करे माया मोह वधावे त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाथ कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए इह माया मोह कटंब है।

गौड़ी बैरागण महला चौथा नित दिन सरात लालच करी पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया जो गुर की जन सेवा करी सो कर कह काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कह काम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की कै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुरे।

हमरे मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरे मन चित हर बहुत प्यारा, हौ कुर्बानी गुरे अपने, जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजना।

कर रहाऊ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले तूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागण महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है। मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया।

कपड़ पहनन दिया रास अन्न को गाणी जिन दिए सो चेतना आवई पशु हों कर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करह सब खेल तुम स्वामी जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन परंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हृदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जानो मास काती कै किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यागहु जन नानक जो अंति अवसर लए छडाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हौ खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाउ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िए जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरै हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरा मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब ज्योत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरपूरै सिर वेचियो गुर पैमोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर नाम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते
जन नानक नाम लए तां जीवै हर जपिए हर किरपा ते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो किरपा जगजी मन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहाउ जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजे मन निरत करे कर नाचे आपे साहा वड्डे प्रभ स्वामी हम बन जा रे है ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन

हम सतगुर पार ब्रह्म कर मानी, हम मूढ़ मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जानी रहाउ, जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकानी, हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गानी, जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया ते साकत मूड देवानी, तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो कित्ते हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा, हर आप छुड़ाए छुटिऐ, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ, सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिऐ रहाउ, मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवै निज कर वसीऐ, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम, लै लाहा हर मन हसीऐ, हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ, मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटिऐ, ते साकत चोर जिन्ना नाम वसारिया, मन तिनकै निकट ना पिटिऐ, मेरे मन सेवो अलख निरंजन नरहर, जित सेवै लेखा छुटिऐ, जन नानक हर प्रभ पूरे किए, खिन मासा तोल ना कटिऐ। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे, मेरा जियो पिंड सब तेरी, दया करहो हर दर्श दिखावहु, मेरे मन तन लोच कनेरी, राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी, गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी, हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाउ, जो हमरे मन चित है स्वामी, साबिद तुम हर जानो मेरी, अन दिन नाम जपी सुख पाई।

अन दिन अन दया वड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहा हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यों पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कशु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाढ़ी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाऊ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभ दुख पावे है जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

हर अग में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा ने ही अरै, तिन आग है आन परीठा, मन मुख ही अरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निकस फोल फलीठा, हर प्रभ आन मलाव गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीव मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीव हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीव हर पायड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जीव हर

एक राजे तख्त बह नित सुखिये एक ना भिख मगाया जियो सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मा

हर हर नाम परगासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किनै हर प्रभ डिठड़ा नैनी जियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो हो धन कुम लैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा हर प्रभ सज्जन सैनी जियो हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा मैं सुख विहानी रैनी जियो मैं मेलोह संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं मन तन भुख लगाइया जियो हो रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम मैं अंतर बिरहो हर लाइया जियो हर राया मेरा सज्जन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाइया जियो मेरा मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन वाधाइया जियो वारी मेरे गोविंदा वारी मेरे प्यारिया हों तुद विकटने हो सद वारी जियो मेरा मन तन प्रेम परम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर विश

हर कथा मंगह हर चंगी जियो, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जियो, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। राव रहया नहीं दूरी जियो, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया परपूरी जियो, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जियो, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजे जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जियो, आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजे जियो, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध का जय जियो, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नाम मैं हर बिरहो लगाई जियो, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखा हर पाई जियो। गुण गावो संत जियो, मेरे हर प्रभ केरे जियो। जप गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो। फिर बहुड़ ना पवजल फेरे जियो, क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जियो। हर मेलो संत जियो, मन लगा पाओ जियो। गुर शब्दी पाईए हर प्रीत मराओ जियो, वड भागी जप नाओ जियो। मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरियड़ी मन आसा जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो। मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जियो, मन हर रंग रतड़ा हर रस।

पंजवां राग गौड़ी गुआर री चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद इन बेद कुशल होत मेरे भाई क्यों।

सुपन पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक हूं मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवां क्यों भ्रमीए भ्रम किसका होई जां जल थल महियल रवे आसोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवां कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश हो आसो तुझ ते होग अवरना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाय गौड़ी गुआर री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पाव है मिटे जम त्रास नित गाव है हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्ज लिहो सवार रहाव अपने प्रभ स्यो हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाण सगली त्याग संत जन

तिसकी ओट निमुख माहे होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटावो हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआरी महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत कर मान रहाउ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कट्टे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु न जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रगट संसार गुर कै बचन नया व्यहार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआरी महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वड़ियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याओ रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बे सुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास गिरासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इस ते किस नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखन हार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

दीपक दीपाहे अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस ढोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कह हृदय वसे दुख दर्द तेह नानक नसे गौड़ी गुआरी महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना आघाना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्जियो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर भजन।

हस पवन हस्त असवारी चोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया तामह मन संतोख न पाया तख्त सभा मंडन दोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला पर पंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्ब सुख इहो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाइए कहो नानक वड भागी पाइए जा कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवा प्राणी जाने एहो तन मेरा बहुर बहुर वाहू लपटेरा पुत्र कलत्र गिरस्त का पासा होर ना पाइए राम के दासा कमन सो बिद जित राम गुण गाए कमन सो मत जित तरह ए माए रहाउ जो पालाई सो

नाम गुण गाओ। निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन न सुनिए कतु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए। आठ पहर जिहवे आराद, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली। बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह। नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी। रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जै, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरे, कमन सो जन जो सौदा जोरे, महल साहा का किन बिद पावे, कमन सो बिद जित पीतर बुलावे, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार। गौड़ी महला पंजवां गुआररी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन। हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे। रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको बनज एको व्यवहारी, अवर न जान है बिन निरंकारी। हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते। संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

सोभा मूल ब्यादि व्याप सलोभा माया व्यापत बहु प्रकारी संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी रहाऊ व्यापत हम बुद्ध का माता व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता व्यापत रूप जोबन मदमस्ता व्यापत भूम रंक अर रंगा व्यापत गीत नाद सुन संगा व्यापत सेज महल सिंगार पंच दूत व्यापत अंधियार व्यापत कर्म करे हों फासा व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा चार व्यवहार व्यापत एह जात सब किश व्यापत बिन हर रंग रात संतन के बंधन काटे हर राए ताको कहां व्यापै माई कहो नानक जिन तूर संत पाई ताके निकट न आवै माई गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी। उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब सियान को ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वास होते।

काल तिस जन की सब पूर्ण काल गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा बंधन तोड़ बोलावे राम मन महला गै साच ध्यान मित है कलेश सुखी हुए रही है ऐसा दाता सतगुर कही है सो सुख दाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मलावे रहाओ जिस हुए दयाल तिसे आप मलावे सर्व निदान गुरु ते पावे

पार ब्रह्म स्यो लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपुरै मेटिया अन्यहारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जाके कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर त्याई गुरपुरे ते ए मत पाई रहाउ करन करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगम अगोचर सदा बेअंता सिमर मना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्ब निदान

जामी सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रब चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्शना में तय कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन।

पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारनी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस सियो मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस सियो ने रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोहा सनिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वार भी महला पंजवा कल युग मह मिल आए संयोग जिचर आ गया तिचर भोग है भोग जलै न पाइय राम स्नेही किरत संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाइय प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाइय सील संयम प्रिय आग्या मान तिस नारी को दुख ना जमान कहो नानक जिन प्रियो परमेश्वर कर जानिया धन सती दरगाह परवानिया गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा हम तनवंत भागठ सच

परे पंडार अखूट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, टूट न आवे वद दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लियार लाए। गौड़ी महला पंजवां, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चूका देखिया भरपूर। सतगुर अपने कौ बलिहार, छोड़ न जाई सर पर तारे रहाव। दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा भला कोई ना कही जै, छोड़ मान हर चरण गही जै। कहो नानक गुर मंत्र चितार, सुख पावे साचे दरबार। गौड़ी महला पंजवां, जांका मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया। जां की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम ता का भागी रहाउ। जां कहो रस हर रस है आयु, सो अन रस नाही लपटायु। जा का कहया दरगाह चले, सो किसको नदर ले आवे तले। जां का सब किस ता का होए, नानक ता को सदा सुख होए। गौड़ी महला पंजवां, जां कै दुख सुख सम कर जापै, ता को काड़ा कहां बियापै। सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय रहाउ। जां कै अचिंत वसै मन आए, ता को चिंता कतहु नाहि। जां कै बिन सिओ मन ते परमा, ता कै कछु नाही डर जमा। जां कै हृदय दियो गुरनामा, कहो नानक ता कै सगल निधाना। गौड़ी महला पंजवां, अगम रूप का मन महथाना, गुर प्रसाद किने बिरले जाना। सहज कथा के अमृत कुंटा, जिसह प्राप्त तिसलै पुंचा रहाव। अनहत बाणी थान निराला, ता की धुन मोहे गोपाला। तह सहज अखारे अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता। हरख अनंत सोग नहीं बिया, सो कार गुरु नानक को दिया। गौड़ी महला पंजवां, कवन रूप तेरा अरादो, कवन जोग काया ले साधो। कवन गुण जो तुझ लै गावो, कवन बोल पार ब्रह्म रिजावो रहाव। कवन सो पूजा तेरी करो, कवन सो बिद जित पव जल तरो। कवन तप जित तपिया होए, कवन सो नाम हमे मल खोए। गुण पूजा ज्ञान ध्यान, नानक सगल काल, जिस कर कृपा।

आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहा मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पये समरथ अंगा।

माया वड्याई सो वड्डा जिन राम निवलाई रहाउ। भूमिया भूम ऊपर नित लुजै छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत बीचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां पूरा मार्ग पूरा इशनान सब किश पूरा।

हर कै मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवां संत की धूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट संत का दर्स पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवां हर गुण जपत कमल पर गासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे बड़े भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाईए निदनामा साध संग पूर्ण सब कामा

मुख हर हर बोलै सो जन इत उत कतह ना डोलै जा कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसाह जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम

नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान, हर का नाम जन को तारे, सास सास जन नाम सुमारे, कहो नानक जिस पूरा भाग, नाम संग ताका मन लाग, गौड़ी महला पंजवां, संत प्रसाद हर नाम ते आया, तब ते तावत

राध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरन आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन मह लेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भागै रहा।

ऐल करत जन सोहै तां कौ माया अगन ना पोहै। मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजी अले।

गुरपुरा पेतिया लिवलाई रहाउ। हर का नाम दियो गुरमंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत। आनंद भये गुरमिलत कृपाल, कर कृपा।

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवां कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी पै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण गाया रहाउ चरण कवल हृदय अंतर तारी अग्न सागर गुर पार उतारी बूढ़त जात पूरे गुर काढ़ी जन्म जन्म के टूटे गांडी कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिस भेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवां साध संग तां की सरनी परो मन तन अपना आगै धरो अमृत नाम पीवो मेरे भाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ ताज अवमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कार हो सास सास प्रभ मन संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग कहो नानक ता की चरणी लाग गौड़ी महला पंजवां सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा कर दया सतगुर गुणतासा दुख ना ठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फुरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक तेजन सुफल फले गौड़ी महला पंजवां।

सिमरत सिमरत प्रभ का नाम, सगल रोग का बिनसिया थाऊ, सहज सुपाए बोले हर वाणी, आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी, दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे, गौड़ी महला पंजवा, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओह बेला कहो हौ बल जाऊं, जित मेरा मन जपै हर नाऊ रहाऊ, सफल मूरत सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी, सफल ओह माथा संत नमस्कारस, चरण पनीत चलहै हर मार्ग, कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द राख मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन

के अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा पै मह रचियो सब संसारा तिस पहो ना ही जिस नाम आधारा पहो ना व्यापै तेरी सरना जो तुद पावे सोई करना रहाओ सोग हरख मह आवन जाना तिन सुख पाया जो प्रभ पाना अग्न सागर महाव्यापै माया ते सीतल जिन सतगुर पाया राख ले प्रभ राख नहारा कहो नानक क्या जंत विचारा गौड़ी महला पंजवा तुमरी कृपा ते जपिया नाओ तुमरी कृपा ते दरगाह थाओ तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ तुम मन बसे तो दुख न लागे तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी करो अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवा कण बिना जैसे थोथर तुखा नाम विहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवां, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाव, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुरजी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवै परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बेख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बाता चोटा खावे, अनक पढ़दे मह कमावे विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल बिधाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाव, संत संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विकनासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को व्यापारी पूरा, जिसे

आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़े महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस सिंह आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुबा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जानह स्वान कहो नानक हम लूण हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कह हृदय वसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परम है बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरता कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कर दे वसह भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई।

उक्त फल पाए। उक्त सियानप इसके कश नाही, कर कृपा नानक गुण गाही। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड भागी हर कीर्तन गाइए। पार ब्रह्म तू देह ता पाइए रहाउ, हर के चरण हृदय उरतार। भव सागर चढ़ उतरह पार, साधु संग करहो सब कोय। सदा कल्याण फिर दुख ना होय, प्रेम भगत भज गुणी निदान। नानक दरगाह पाइए मान, गौड़ी महला पंजवा। जल थल महियल पूर्ण हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल

नानक प्रभ राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मज्जन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाव हर के चरण हृदय मह बसे जन्म जन्म के किल विख नसे

किल विख खोए, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रबया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा ता की पूर्ण होई काल जा की प्रीत अपने प्रभ नाल सो वैष्णो है अपर अपार कहो नानक जिन तजे बिकार गौड़ी महला पंजवां जीवत छाड़ जाहे देवानी।

रहाउ बिखैठ गौरी जिन जिन खाई ताकी तृष्णा कबहू न जाई दारण दुख दुत्तर संसार राम नाम बिन कैसे उतर सपार साध संग मिल दोए कुल साध राम नाम नानक आराध गौड़ी महला पंजवा गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी पूरा न्याओ करे करतार अपने दास को राखन हार रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप निंदक मुआ उपज वड ताप तिन मारिया जे रखे न कोई आगे पाचे मंदी सोए अपने दास राखे कंठ लाए शरण नानक हर नाम त्याए गौड़ी महला पंजवा महजर झूठा की तुने आप पापी को लागा संताप जिसह सहाई गोविंद मेरा तिसको जम नहीं आवे नेरा रहाओ साची दरगाह बोले कूड़

आप अपन कमाए आपे बांधी दरब गया सब जी कै साथे नानक सरन परे दरबार राखी पैज मेरे करतार गौड़ी महला पंजवा जन की धूर मन मीठ खटानी पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाओ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई साध तूर कर सुध मंजाई अनक जला जे तो वै देही मैल न उतरे सुध न तेही सतगुर भेट्यो सदा कृपाल हर सिमर सिमर काटिया पौ काल मुकत भुगत जुगत हर नाओ प्रेम भगत नानक गुण गाओ गौड़ी महला पंजवां।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार। निर्मल गुण गावहु नित नीत, गई ब्याद उबरे जन मीत। मन बच क्रम प्रभ अपना त्याय, नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवां, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव। परम गए पूर्ण भई सेव, रहाउ सीतला ते रखिया बिहारी। पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै। साध संग हर अमृत पीवै, गौड़ी महला पंजवां। तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत। नाम बिना कैसे सुख लहिऐ, रसना राम नाम जस कहिऐ। रहाउ तिन ऊपर जाइऐ कुर्बान, नानक जिन जपिया निर्वाण। गौड़ी महला पंजवां, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल। ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखै मेरे भाई। रहाउ आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर कौ जा।

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है गौड़ी महला पंजवां थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई।

सुख पाया लगदा सह पाए आप गया ताया पह पए कृपा निदान की सरनी पए जो चाहत सोई जब पाया तब ढूंढन कहां को जाया अस्थिर पए बसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख बासन गौड़ी महला पंजवां कोट मजन कीनो इशनान लाख अरब खरब दीनो दान जा मन बस्यो हर को नाम सगल पवित्र गुण गाए गोपाल पाप मिट है साधु सरन दयाल रहाव बहुत उर्द तप साधन साधे अनक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन अरादे सिमरत शास्त्र वेद बखाने जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपत प्रभ सिंह मन माने अगाध बोध हर अग्न अपारे नाम जपत नाम हृदय बिचारे नानक कहो प्रभ कृपा तारे गौड़ी महला पंजवा सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुर हृदय बसाया गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ अन दिन जपो गुरु गुर नाम ताते सिद्ध पए सगल काम दर्शन देख शीतल मन पए जन्म जन्म के किल बिख गए कहो नानक कहां पै पाई अपने सेवक की आप पैज रखाई गौड़ी महला पंजवा अपने सेवक को आप सहाई नित प्रत पारे बाप जैसे माई प्रभ की शरण उबरे सब कोए कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव अब मन बसया करने हारा पै बिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के किल बिखलाते कहन न जाए प्रभ की वडियाई नानक दास सदा सरनाई राग गौड़ी चेती महला पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम को बल पूरन पाई ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ जो जो चितवै दास हर माई सो सो करता आप कराई निंदक की प्रभ पत गुआई नानक हर गुण निरपो गाई गौड़ी महला पंजवा भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गह लेहो अंगुरिया रहाओ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करना में साजन मीत पिता महतरिया चरण कमल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया राग गौड़ी बैरागन महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दातिया निमक निमक बलिहार जी हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे सम्मला कवन विधि बिचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न पए केसवा सेजन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंद पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवां।

रहाव बन बन खोजत फिरत बैरागी बिरले काहू एक लिव लागी जिन हर पाया से वड भागी ब्रह्मादिक सनकादिक।

सिद्ध हर आहै, जिस है परापत सो हर गुण गाहै। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

नाम आधारी राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवनो गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो हौ फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नान साध संग मेरी जलन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिल बे कौ प्रीत मन लागी पाई लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा।

रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करहु निवास।

पास गौड़ी महल्ला पंजवा हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवो दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाउ सेवा करो दास दासन की अनक पांत तिस करो निहुरा तुला तार तुले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख भेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मुह मार्ग दे बताई रहाउ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले ओह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई।

सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योती जोत समाई रहा दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतले सतगुर मुझे बतायो रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो कह पह करो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निध नाम निधान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्त तत मलायो गौड़ी महला पंजवा औज कटै दिन सरै नारी।

बा राखु राखन हारी खेद कर है और बहुत संताव है। आयु शरण तुहारी कर कर हारियु अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकी ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया। जीत लये ओए महा बिखादी सहज सुहिली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपो संग तुम्हारे बस्ते

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्श हर राया सोई हुआ जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोह मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवा हौं तां कै बलिहारी जां कै केवल नाम आधारी रहाओ महिमा तां की केतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा तां कै चरण परों तां जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवध जो दीसै सब किस जोग मह काटिया नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमख निमख नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैरागने आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेट माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला।

ते तानते गुर शब्द दीपक परगासा प्रभु की जाली ताकी काटी जाको साध संगत विश्वासा तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूर्ण होए मन की आसा गुर पेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवे जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवां दया मया कर प्राण पत मोरी मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गातमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभ राती ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कह है प्रगट प्रभ होआ आनंदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति उच्चे सुखदाते प्रभ प्राण अधूरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवां तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओड़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन कहो करहो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी भांति कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किश तुमरे हाथे ऐसा निदान देहो मोह कहो हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे कहो गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवां सहज समायो देव मोह कहो सतगुर भये दयाल देव रहाओ काट जेवरी कियो दासरु संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोह को अचरज गुरह दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मनह प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तया अनपै ठहरायो मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाऊ गवायो जो सो प्रसन्न भये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किश आवत ना किश जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवां पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता कियो टगही जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख ओही त्याय रे कोट पतत उधारी खिन मै करते बार ना लागै रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी।

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारी इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटा प्रित पारी रहाउ महा कष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राख पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नाहारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नू सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नू रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिखिया पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवां दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है अहम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत भने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान भय पीत चीन राम सेवक भय रहत कीन लख चौरासी जोन फिरह गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहु मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत हर सेवी है सास सास हर त्याई है रहाओ संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै संत प्रसाद हर जापी है सो जन दुख ना व्यापी है
जां को गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अग्नते नानक को प्रभ मया कर मेरा मन तन वासै नाम हर गौड़ी महला पंजवां रसना जपिया एक नाम इहा सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम रहाओ कटिया तेरा अंगरोग तू गुर प्रसाद कर राज जोग हर रस जिन जन चाखिया ता की तृष्णा लाथिया हर विश्राम निध पाया सो बहुर न कत ही ताया हर हर नाम जा को गुर दिया नानक ता का पहो गया गौड़ी महला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवह से गुणी गहीर रहाव जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ता कै कर तल नव निध सिद्ध जो जान है हर प्रभ धनी किस नाही ता कै कमी करने हार पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया हर धन जा कै ग्रह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

संतना वाहू स्यों रे हितनो हार जोआर जुआ बिदे इंद्री वस लै जितनो हरन भरन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग किरपा निध मैं जितनो गौड़ी महला पंजवा मोहे दासरो ठाकर को तान प्रभ का खाना रहाओ ऐसो है रे खसम हमारा खिन मह साज सवार नहारा।

हीरा मन तीरा एक टेक एको आधारा जन नानक हर की लागा कारा गौड़ी महला पंजवा। है कोई ऐसा हूं मैं तो रह इस मीठी ते एहो मन हो रह रहा अज्ञानी मनुख भया जो नाही सो लोरै रैण अंधारी कारिया कमल जुगत जित भोरै भ्रम तो हारिया अनक विधि कर टोरै कहो नानक कृपा पही साध संगत निद मोरै गौड़ी महला पंजवा। चिंता मन करना मई रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म जांकै सिमरन सुख भई अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खई कृपा निद प्रभ मया धार नानक हर हर नाम लई गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाय रहाओ एक रैन के पहुन तुम आए बहु जुग आस बंधाए ग्रह मंदर संपै जो दिसै ज्यों तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलक सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर खिन मह होत पराए पहरे बागा कर इशनाना चोआ चंदन लाए निरपहो निरंकार नहीं चीनिया ज्यों हस्ती नवाए ज्यों होए कृपाल ता सतगुर मेले सब सुख हर के नाए मुक्त भया बंधन गुर खोले जन नानक हर गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए रत्न जन्म सफल गुर किया दर्शन को बल हरिए रहाओ जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइए जो हुए दयाल सतगुरे अपना ता एह मत बुद्ध पाइए मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटे है सर्व सुखा सुख पाइए सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आइए नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चाले कर सेवा सतगुरे अपने की गुर ते पाइए पाल गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिन से सर्व अंदेसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा राग गौड़ी महला पंजवा।

कारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही महलु जीए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

मेरी नेरी गौड़ी महला पंजवा मातो हर रंग मातो रहाओ उही पियो उही कियो गुरह दियो दान कियो वाहू स्यों मन रातो उही पाठी उही पोचा उही प्यारो उही रूचा मन ओहो सुख जातो सहज खेल आनंद खेल रहे फेर पए मेल नानक गुर शब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम लेहो मीता लेहो आज्ञा बिकम पंथ पै आन रहाओ सेवत सेवक सदा सेव तेरा संग बसत है काल कर सेवा तू साध की हो कातिय जमजाल होम जग तीर्थ किए बिच हों मैं बधे विकार नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निश्चल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साकते आवह जाहे।

कीर्तन हुए उदार राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुखरे हरख सोग मान मृत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ जो लो हो किस सोचो चितो तौलो दुखन भरे जो कृपाल गुर पूरा पेटिया तौ आनंद सहजे जेती सियानप कर्म हो किए केते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भये जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जौ लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहाओ मान अभमान दो समानी मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपौ भये संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो ना लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुरे ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्ब लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावै फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूझत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारै नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावै करता होए जनावै रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इह मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इह मेरा परम मोह कस सूजस नाई एह पैखर पय पैरा तब इह कहां कमावन परिया जब इह कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करन हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरै मूसे रहाओ।
भरत नेम संयम मह रहता, तिनका आड़ ना पाया। आगे चलन और है पाई, ऊहा काम ना आया। तीर्थ नाए अर तरनी प्रमता।

वेद मुख बचनी उच्चरै आग्या महल ना पाईए बूझै नाही एक सुधाखर ओहो सगली चाख चखाईए। नानक कहतो एहो बीचारा जे कमावै सो पार ग्रामी गुर सेवहो अर नाम त्यावहो त्यागहो मनहु गुमानी। गौड़ी माला पंजवा माधो हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु ना होवै स्वामी ज्यो राखो त्यों रहिए रहाओ। क्या किछ करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो हो तित ही लागा पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते एक रूप लिव लावो हो नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जीओ कोट जना कर से।

तिस निव निव लागो पाई जियो। ओथी पंडत बेद खोजंता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपो नाम त्याई जियो। पये कृपाल स्वामी मेरे जियो, पथत पवित लग गुर के पैरे जियो। प्रम पहु काट किए निरवैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो। जिन नाओ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभा वंता जियो। जिस साधु संगत तिस सब सुकरनी जियो, जन नानक सहज समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो। रैन दिनस सास सास चितारे जियो, संत देव

सेज सुहावी एहो मन बिकसंदा जीओ, पेख दर्शन एहो सुख लही जीओ, चरण पखार करी नित सेवा।

दुख परहरिया जीओ, हर हर नाम जपे जप तरिया जीओ, एहो अजर नानक सुख सही है जीओ। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन।

सब फिक्किया तन मन फिक्का होय, बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय। अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार। साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे, औगण सब मटाए कह पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर

ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवा साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनस भागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता तिन जग तत पछाना उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना जन नानक एहो खेल कथन है किन्हू गुरमुख जाना गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई एक बिनसै एक अस्थर मान अचरज लखियो ना जाई रहा काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा करमा न्यू

रहियो राम सरनाई। गौड़ी महला नौवा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों, एह विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग, देख तास उठ तावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूड़ता ही बिसरावे, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा, साधो एहो मन गहियो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, जाते थिर न रहाई रहाओ। कठन क्रोध कट ही के भीतर, जेहे शुद्ध सब बिसराई।

तौ सब बिद बने आई गौड़ी महला नौवा। साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमूलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ। पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अवमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो। गौड़ी महला नौवा को माई भूल्यो मन समझावे वेद पुराण साध मग सुन कर निमख ना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावे माया मोह महा संकट बन तास्यो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो ना लावे नानक मुक्त ताहे तुम मानो हो जेहे कट राम सुमावे। गौड़ी महला नौ साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाओ। लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिख ए सा

होत है बवरा अहल औद कट नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यू हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पर रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर रे एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया भिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए ना देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रातो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज सुमाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरु अंकस सच शब्द निशान राज द्वार है सोभ सो मान चतराई न चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर्म है अमृत तस्कर ले नन्ना कार न कोई करे राख है आप वड्याई दे नील अनिल अग्न एक ठाई जल निवरी गुरबूज बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आँखों कैसा सागर डूंघर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन न डरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कहया तिन कहन बखानिया जिन बूझया तिन सहज पछानिया देख भी चार मेरा मन मानिया कीरत

0: रहाउ।
1: मन भूलो बहु चित विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम गुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन।

या होई। तरन गगन नह देखो दोए, नारी पुरख सबाई लोए। राव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला। कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुर मोह को एक बुझाया। एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता। एको हुक्म वरतै सब लोई, एक सते सब उपत होई। राहा दोवै खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछान। सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सलाही। गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा। मुक्त भेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत बिचारे। पंच मार साच उर धारे रहाओ, जिसके अंतर साच वसावे। जोग जुगत की कीमत पावे, राव सस एको ग्रह उद्याने। करनी कीर्त कर्म समाने, एक शब्द एक भिख्या मांगे। ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, तै रच रह ना बाहर जाए। कीमत कौन रह लिव लाए, आपे मेले परम चुकाए। गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार। हम मैं मारे करनी सार, जप तप संयम पाठ पुराण। कहो नानक अपरम परमान। गौड़ी

0: निरपो जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिव नावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे
1: साचे शब्द दर निसाणे
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै न जावे चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलह उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूजे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूजै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूजे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

सुख पावे भरम पलानिया एक तिल भूले बहुर पछतानिया कंस केस चंडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म धीर जहर नाय नानक नाम मिले गुण गाय गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाट पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहां सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहां सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी खोड़ शिंगार करे अत प्यारी बिन जगदीश भजे नित खुआरी दर कर महला सेज सुखाली अहनस फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लश्कर ने बखवासी पाजे बिन जगदीश झूठे देवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलावो ताज कुल है सिर शत्र बनावो बिन जगदीश कहां सच पावो खान मनूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा हों मैं ममता गुर शब्द वसारी गुरमत जानिया हृदय मरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान से अवरे परपंच ब्याद क्या गै कवरे भाई मिले सच साचे साचरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाए मिले मन धोई रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत पर जारे सो उबरै गुर शब्द बीचार।

ब्राह्मण हितकारी, क्रोध बनासै सगल विकारी, तत मत खोवै नाम वसारी, पर कर चीत मनमुख डोलाए, गल जेवरी तंदै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर को देई, काम दाम चित पर वस सेई, बिन पिर त्रिपत ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी त्रिपतासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरै न लेखै पावै, वेस करै बहु भस्म लगावै, नाम विसार बहुर पछतावै, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम बसार सह जम दुख रहाओ, चो आचंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम बसारे है सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तखत सलाम, अदकी तृष्णा व्यापै काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावह नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, किसको वाह वाह जे वाट दिखावे, किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, किसको वाह वाह जे मेल मलावे, वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाणे दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रत्ते पत पाए, गौड़ी महला पहला, हों मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हों हों करत नहीं सच पाईऐ, हों मैं जाए परम पद पाईऐ रहाओ, हों मैं कर राजे बहुत आवह, हों मैं खपह जन्म मर आवह, हों मैं निवरै गुर शब्द विचारै, चंचल मत त्यागै पंच संघारै, अंतर साच सहज घर आवह, राजन जान परम गत पावह, सच करनी गुर परम चकावै, निरपो कै कर ताड़ी लावे, हों हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही, हों मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया, ब्रह्म कमल पयाल ना पाया, आग्या नहीं लीनी परम पलाया, जो उपजै सो काल संघारिया।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दीस है, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रीस है। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीना आप को, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूजी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पी

माहे। सूतक भोजन जेता किस खाहे, सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै ना जन्मै काल ना खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोई, विण नामै को मुक्त ना होए। जोग चारे नाम उत्तम शब्द बीचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरै ना आवै जाए, नानक गुरमुख रहै समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हिरदय उरतारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पर तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरोह पारा। रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावै सो थाए ना पाई, आवै जावै ठौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बाग ज्यो लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

एहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरह सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

फिर अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रत्ते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस ते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण परमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे हौ मैं दूजा शब्द जलावे ना मेरा ते हर गुण गावे माया दासी भगतां की कार कमावे चरनी लागे ता महल पावे सद ही निर्मल सहज समावे हर कथा सुनह से तनवंत दिसह जुग माही तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही सहजे गुण रवह साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हौ मैं मार ब्रह्म मलाया गौड़ी महला तीजा।

ताय साच ना छपै जे को रखै छुपाय ज्ञानी बूझ सहज सुपाय गुरमुख साच रहिया लिभ लाय हमे माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाय सतगुर दाता शब्द सुनाय धावत राखै ठाक रहाय पूरे गुर ते सोजी पाय आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावह सच गुणतास दासन दास नित होवह दास ग्रह कटंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावै सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई जां हिरदय वसिया सच सोय गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होय हुकम पछाणे बूझे सच सोय।

सब जग मह लोए, गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वडभागी, हौं मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध

आए मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गो

हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चलै तेरे नाल मन करहला वड भागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौ निद नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम भवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरै गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वड भागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब एहु मन मह करत गुमाना तब एहु बावर फिरत बेगाना जब एहु हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुरे अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको एहु जानस मंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इनह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर मह दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी करन करामन सब किश एक है आपे बुद्ध विचार विवेकै दूर ना नेरै सब कै संगा सच सलाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा तिसकै हिरदै रविया सोए मन पन सीतल निश्चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ जास जपत पौ अपदा जाए धावत मनुआ आवे ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत एह होमै भागे जास जपत बस आवह पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगाह सिजे जास जपत कोट मिटह अपराध जास जपत हर होवह साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सहज निवास जास जपत एह अग्न ना पोहत जास जपत एहो काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा जास जपत मुश्किल कछु ना बने
जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर सुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिस कै हिरदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यों संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ता कै आत्मै होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ता कै होए, जा को दया मया प्रभ सोए रहाओ, साजन दुष्ट जा कै एक समान, जेता बोलन तेता ज्ञान, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान।

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रुण चुनकार सोहाया तां कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परेउ कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तवन अस्थान जो कबह ना तरे तवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पास पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करे निचल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुखदा मार गवावे तिसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे जो इस मारे सो दरगाह सिजे जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवे गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो अनदिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको भये कृपाल कृपा निद तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यो जुरै ता सबको मीत हर स्यो जुरै ता निश्चल चीत हर स्यो जुरै ना व्यापै काड़ा हर स्यो जुरै ता हुए निस्तारा।

दास नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदरे है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की वाणी, कोट फला गुरते भिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी

बात, एक कह आप अनेक कह पांत, जांकी दृष्ट हुए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीव है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास, बिन सिमरन पय कुकर काम, साकत बेसुआ पूत नाम, बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ठ फराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे नाव, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाव रहाव, गुर कै बचन सुन रसन बखाणी, गुर किरपा ते अमृत मेरी बाणी, गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग, गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिसकी कटिया जम की पासा, गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवा।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन

था। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिन सजाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख।

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत

सुन सुन पंत डराऊं बहुत पैहारिया, मैं तकी ओट संतह लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसे ही नाही हर पूर पंडारिया, चहो जिस जपिए नाऊ सूख सुवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ पुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निदान अकथक थारिया, हर दरगाह शोभावंत बाहां लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजल करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जिहवा हर एक मंगो रहाओ, तज हम मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किनै गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहो ते रहियो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल।

मानी ज्यो उलझायो बाद बुद्ध का मरत्यां नहीं बिसरानी पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हू कौ संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी दयाल पुरख कृपा।

आहार मीठ रस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिलै मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंद न मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सहु जानिया नानक नाम ना छोड़े सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहस्सी मुंद मन अमाहो साजन रहस्ते दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करे बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरेगी नाह बिना प्रभ वे परवाहे धन नाह बाजो रह ना साकै बिखम रैण कनेरिया नह नींद आवै प्रेम पावै सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा धन मिलै मलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ियाड़ी जियो कमन मलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे तां पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली तां फिर रावी बिगसे अमृत बाणी नानक सा धन तां फिर रावे जा तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़ आरे क्यों फूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोए ना पावै हठ निग्रह बेबाण नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अन दिनो तिस बाज वखर कोई ना सूजै नाम ले वो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक।

गुर पूरै सच पाया, राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख गुर प्रसाद। सा तन बिनो करे जियो, हर के गुण सारे। हिन पल रह न सकै जियो, बिन हर प्यारे। बिन हर प्यारे रह न साकै, गुर बिन महल न पाईऐ। जो गुर कह सोई पर कीजै, तिसना अग्न बुझाईऐ। हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई, बिन सेवै सुख न पाए। नानक सा धन मिलै मलाई, जिसनो आप मलाए। धन रैन सुहेलड़िए जियो, हर स्यो चित लाए। सतगुर सेवे भाओ करे जियो, विचों आप गवाए। विचों आप गवाए हर गुण गाए। अन दिन लागा भाओ, सुन सखी सहेली। जी की मेली गुर कै शब्द समाओ। हर गुण सारी तां कंत प्यारी, नामे तरी प्यारू। नानक कामण नाह प्यारी, राम नाम गल हारू। तन एकलड़ी जियो, बिन नाह प्यारे। दूजे भाए मुठी जियो, बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे। माया मोहे खुआई, कूड़ बगुती तां फिर मुक्ती। सा तन महल न पाई, गुर शब्दे राती सहजे माती। अन दिन रह समाए, नानक कामण सदा रंग राती। हर जियो आप मलाए, ता मिलिए हर मेले जियो। हर बिन कवन मलाए, बिन गुर प्रीतम आपने जियो। कौन भरम चुकाए, गुर भरम चुकाए। इउं मिलिए माए, ता सा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार, बिन गुर मग न पाए। कामण रंग राती सहजे माती, गुर कै शब्द विचारे। नानक कामण हर वर पाया, गुर कै भाए प्यारे। गौड़ी महला तीजा, फिर बिन खरी निमाणी जियो। बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई, फिर बिन नींद ना आवै जियो। कापड़ तन ना सुहाई, कापर तन सुहावै जां फिर भावै। गुरमती चित लाईऐ, सदा सुहागण जां सतगुर सेवे। गुर कै अंक समाईऐ, गुर शब्दै मेला तां फिर रावी। लाहा नाम संसारी, नानक कामण नाह प्यारी। जां हर के गुण सारी, सा तन रंग माणे जियो। अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो। गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हमें मारे। इन बिद मिलो प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती। साचे नाम प्यारे, अपने गुर मिल रही है। अमृत गही है, दुबदा मार निवारे। नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुट्ठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचों होमे मारी। हर का नाम हृदय बसाई, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद ना आवै जियो, भावै अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावै, मरियै हावै। बिन फिर क्यों सुख पाईऐ, गुर आगै करो बिनंती। जे गुर पावै, ज्यों मिलै तिवें मिलाईऐ। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरै ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोए लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे। रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिया प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हमे मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी। किस आग्या जाए पुकारे, नानक मनमुख थाउ ना पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिया जियो। आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रह दिन राती, अन दिन रह लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो। क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहिथा जियो। शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए। हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरिए। गुरमुख भगत प्राप्त होवै, जीवतियां इउं मरिए। जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित्र शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी, गत नहीं जानी। हम मैं तात संसारी, जो आया सो सब को जाती। उभरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम बखाने। आप तरह कुल तारे, नानक नाम बसै घट अंतर। गुरमत मिले प्यारे, राम नाम बिन को थिर नाही जियो। बाजी है संसारा, दृढ़ भगत सच्ची जियो। राम नाम वापारा, राम नाम वापारा। अगम अपारा, गुरमती धन पाईए। सेवा सुत भगत एह साची,
ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਹਮ ਮਤਹੀਨ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਹਾਵੇ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀਉ, ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ। ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜੀਉ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ, ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ। ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟੇ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੱਚੇ ਵਿਟੋ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

मोड परदेस सदाए दूजै किनै सुख न पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए भरम भलाए ओह क्यों कर सुख पाए चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुग्ध गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सखा हर जियो गुर पुरख बधाते पुरखो बधाता एक श्री तर क्यों मिलह तुझै अड़ीनिया कर करह सेवा आसीस चरणी मन आस दर्श निमानिया सास सास ना घड़ी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारिंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभ दाते एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों धीरे गुणवंत नाहा दयाल बाला सर्व गुण भरपूरे।

प्रभु दिखाया। हिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलिया करै कामन, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, बजी वधाई। कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंद पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया। अनहत वाजे बजे है घर मह, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला।

जह साध संत इकत्तर होवे तहां तुझै त्यागही। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासी मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली। मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल तारिया, तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपह निधाना। जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे, मन बचन कर्म जे तुद अराध है से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना, बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे, तारिया जहान

ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही, सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी। जित लग तरिया संसारी, गौड़ी महला पंजवां सलोक। पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन सिरी तहर, चरण कमल अरादिए। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिए। कल मलै दहता शुद्ध करता, दिन सरैण अरादु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधारै, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा मैं समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। बिसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारी सब किसे। काल कंटक लोभ मोह नासे, जी जा कै प्रभु बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवां, सुन सखिए मिल उदम करेहा। मनाए लह हर कंत, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंत, सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत, नानक जरा मरन पै नरक निवारै। पनीत करै तिस जंत, सुन सखिए एह भली बिनंती। एहो मतांत पकाइयै, सहज पाए अपाद रहत होए। गीत गोविंद गाइयै, कल कलेश मिटह भ्रम नासह। मन चिंदिया फल पाइयै, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। नानक नाम त्याइयै, सखी इश करी नित सुख मनाई। प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागण। पेखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग। समरथ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता। सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे। मेरा मन तन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद पली। मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी। प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी। नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सुहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत,
गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक, आपह किया कराया आपह करमै जोग, नानक एको रब रहिया दूसर होवा ना होग पौड़ी, ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह अस्थूला, लखी न जाई नानक लीला, कर

नै बुझै सो प्रभ सदहु संग। लेखै गणत ना छूटियै काची भीत ना सुध, जिसै बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध। सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग, जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग पौड़ी। रारा रंग हो या मन अपना, हर हर नाम जप हो जप रसना। रे रे दरगाह कह ना को, आओ बैठ आदर शुभ देव। वाह महली पावह तू बासा, जन्म मरन नह हुए बनासा। मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नानक करता कै। सलोक लालच झूठ विकार मोह, व्यापत मूड़े अंध। लाग परे दुर्गंध स्यों, नानक माया बंद पौड़ी। लल्ला लपट बिखै रस राते, अहम बुद्ध माया मद माते। या माया मैं जन्मे मरना, ज्यों ज्यों हुक्म त्यों त्यों करना। को ऊन न को पूरा, को सुगर न को मूरा। जित जित लाभ तित तित लगना।

भरे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर्ख क्यों ताहे बसारा, दोष नहीं काहू को मीता, माया मोह बंद प्रव कीता, दर्द निवार है जाके आपे, नानक तेते गुरु।

तद्दा तावत तौ मिट संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सोभा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक तेह

दुख संपै बहु भोग रस नानक साध रुआल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा वीरा आपन बुरा मटावै ताहू बुरा निकट नहीं आवै बांधियो आपन हो बंदा दोष देत आगह को अंधा बात कीत सब रही सियानक जिसै जनाब हो सो जानै नानक सलोक पै पंजन अग दुख नास मनह अराध हरे संत संग जेह रिद बसियो नानक तेना भ्रमे पौड़ी पब्बा परम मटावो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाए दुत्तर महा बिखम एह माए गुरमुख भ्रम पै मोह मटाया नानक तेह परम सुख पाया सलोक माया डोलै बहु विधि मन लपटियो तेह संग मांगण ते जेह तुम रखो सो नानक ना मह रंग पौड़ी मम्मा मांगन हार इयाना देन हार दे रहियो सुजाना जो दीनो सो एक कह बार मन मूर्ख कह करह पकार जो

वासुदेव सर्वत्र मैं ऊन न कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काय दुराय पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहू, वासुदेव जल थल मैं रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चेहन सगल है ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुग्ध अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, राड़ा राड़ मिटै संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे उरिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गवारा, जेहे ही है हम बुद बेकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेह मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत बेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बीचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारी, तुम समरत अगणत अपारी, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पाए,

उकत सियानप सगल त्याग नानक लये समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

0: नरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित करा गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा इह सलोक आद अंत पढ़ना।
1: गौड़ी सुखमनी।

अगंत अनेक वेद पुराण सिमरत सुधाक्षर कीने राम नाम एक आख्यर किनका एक जिस जीव सावे ताकी महिमा गनी ना आवे काकी एक दर्श तुहारू नानक उन संग मोहे उधारू।

दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्ब के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी

प्रयोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालिक जीना हर धन जन को

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

दुर्त सब नसै, संत का संग बड़ पागी पाई है। संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर ना होए। नानक

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै महा उदासत पीसर पीवै अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तौ पी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर कस नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर्थ दे छुटै गर्भ गमान न मन ते हुटै सोच

डरै साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तांकै बल बल जासा सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल श्रेष्ठ साज

सगल कटाको देव हुदान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानू आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी मह अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी।

श्रम करे, संग सहाई किस पर हरे, चंदन लेप उतारे धोय, गर्धब प्रीत पस्म संग होय, अंधकूप मह पतत बिकराल, नानक काड ले हो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाही कछ करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तन स्वाह, गल पात्र कैसे तरह अथाह, जा कै अंतर बसै प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावै, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहियै तो समझै पूरा, कहां बिसन पद गावै गोंग, जतन करै तो पी सुर भंग, कहां पिंगल पर्वत पर भव।

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम

लपट रहो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर दर्ब को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा।

जाय। गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अप

ते रहत, सब कछ जान आत्म की रहत, जिस पावै तिस लए लड़ लाई, थान थन अंतर रहे आसमाय, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जेह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे, जेह प्रसाद सुगंधत तन लाव है, तिस को सिमरत परम गत पाव है, जेह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसै त्याहे सदा मन अंदर, जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहो तिस रसना, जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याहिय त्यावन जोग, जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावै है, तिसै त्याग कत अवर लुभावै है, जेह प्रसाद सुख सेज सुइजै, मन आठ पहर तांका जस गावीजै, जेह प्रसाद तुझ सब को मानै, मुखता को जस रसन बखानै, जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याहि केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगाह मान पावै, नानक पात से

का ध्यान जेह प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चतारी जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप।

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब स्थान गम नानक साध कै संग सफल जन्म साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल साध कै संग कलूखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग न बिरता जावै पार ब्रह्म साध हृद बसै नानक उधरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाऊ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट दीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जान है जेता सुनह तेता बखियान है साध की उपमा तेहो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेख एकस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जा

नाही अभमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को पूजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञान

रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हुए निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म

कार अष्टपदे कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थ वास्ती, कई कोट बन भ्रम है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब काब विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते का अंत न पाव है, कई कोट भय अभमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड।

अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मह रहे आसमाई प्रभ भावै मनुख गत पावै प्रभ भावै ता पात्र तरावै प्रभ भावै बिन सास्ते राखै प्रभ भावै ता हर गुण भाखै प्रभ भावै ता पतत उधारै आप करै आपन बीचारै दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जामी

ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए बिसराम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सोवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

आज्ञा सुख पावे, हनुमंता हुए कारगर बावे, त्रिण समान कस संग ना जावे, बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, हिन मह हुए जाए पसमंत, किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे।

अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगाह कहू कैसे गवे आपस कहो जो भला कहावे तिसह भलाई।

तब इसको सुख नाही कोई। जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई तब

कौतक करे रंग अपार। मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन ना जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी।

अष्टपदी संत कै दुख में आरजा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाय, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हथे को रखै ना कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै।

नानक जो तिस पावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ

नाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन ना लागे कोए उस्तत मन मह कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जन मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कह।

अन दिन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ मैं सोही निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह ना लागह दुख। जिस को हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सहेला नहीं दुलावे। जिस प्रभ अपना

रह बड भागै, नाम जपत पावह विश्राम। नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो किछ करै सो प्रभ कै रंग। सदा सदा बसै हर संग, सहज सुपाए।

ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ

भोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थम है थम्मन त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

घर पांकै, राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल

ब्रह्मांड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवन, कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहि समाणी, सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जां कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोय, नाम जपत तां की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवर ना बूझ करत बीचार, करते की मित ना जानै किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पये बिस्माद, जिन बूझिया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग राच जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाउ तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाउ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै।

बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया न जाई है, नानक ऐसा गुरबत भागी पाई है। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पतियानी। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोई, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उरतार हो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वत। इहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावह, तो तन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांछह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्व निधान मह

नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास, तित कर जाए बसै अबनासी।

सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उदहार हर हर सिमर प्राण अधार अनक अपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करहु।

मन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन निवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए शिव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घर ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो इहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरहा नाम जपावहो भगत भाए तरिय संसार बिन

एक दर्श सुख हुए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला कोहू पावे संग एक बस्त दीजै करमया।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बांध मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाय तब शिव सकत कहो कित ठाय जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अबनासी सुख आपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

आप पति यारा तह कौन कतह कौन सुनने हारा बहु बेअंत पूछते उच्चा नानक आपस को आपह पहुंचा जह आप रचियो प्रपंच अकार तेहो गुण मह कीनो विस्थार पाप पुन कह भई।

आपह तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपह कौतुक करे अनद चोज आपह रस भोगन निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुल ज्यों बलावहो त्यों नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दिस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जान तिस भावे तां सृष्टि।

फल पावहु, हलस पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम

की दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पये अमर।

किन्हें कछ करा, आप भला कर तूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक।

अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरो हर धन के पर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार।

ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में।

राम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाई साध शरण नानक ते आई जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत जिस जन आवै

बिनसहै सगल कलेश आप तजोहो गोबिंद भजोहो पाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तो टाहिर हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवै साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजोहो साधु संग परीत नानक दुरमत छुट गई।

नानक संत निर्मल भये, जिन मन वसिया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग भ्रम तो घणो, सदा संघारै नीच, हरख सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाय, जिन किए तिसह न जाननी, चित

मोह परम बूढ़त घनो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी चतुरथ चारे वेद सुन सोध्यो तत बीचार सर्ब खीम कल्याण निध राम नाम जप सार नरक निवारै।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग घणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सीख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसियो पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याए सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुभाए नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो शरण पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत नरो धर्मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

सार्य नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस जिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बल

करहो साध संग, मन तृप्तासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सब कौ संतोख है, पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है, गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय, नानक

राम पतत उदारन मन बसै नानक छूटै नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंठ

सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पहचान। श्लोक आत्म जीता गुरमती गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे संत।

हो मैं छुट्टी सिमरत हर को नाम शरण गही पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब सियो गुण गोविंद।

नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभे आप दिन दिन चढ़े सो आया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सभी ऊपर जा का हाथ।

मनमुख अहंकार सलाहंदे होमे ममतावाद जिन सलाहन से मरह खप जावे सब अपवाद। जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद। महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी। नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया। जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया।

मन पहाया, सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा, मन अंतर हमें रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन रत्ता रंग सियो, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है, किस नाल तू बड़ी है, तुद जे वड होए सो आखी है, तुद जेहा तू है पढ़ी है, तू घट घट एक वरतदा, गुरमुख परगड़ी है, तू सच्चा सब सुदा खसम है, सब दू तू चढ़ी है, तू करह सो सच्चे होए सी, ता कायत करी है।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिमें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करहै सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहेब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठै सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुरु अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

जिन को वारिया जिन जपया सिरजन हार महला चौथा आपे धरती साजियन आपे आकाश विच आपे जंत उपायन।

तू सब किल विख कत्ते तास पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे तिन के मुख दारे उजले जिन हर हिरदय सच्चा पावे कूड़े आर पछाह सटियन कूड़ हिरदय कपट महा दुख पावे मुह काले कूड़े आरिया कूड़े आर कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए गुरसिखी अमृत बीजिया तिने अमृत फल हर पाए ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगहा सची पैनाए इकना अंदर खोट नित खोट कमावे है ओहो जेहा बीजे तेहा फल खाए जां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वाब गीर सब उगड़े आए।

एक मन एक वर्तदा जित लगे सो थाए पाए कोई गल्ला करे कनेरिया जे घर वत हो साई खाए बिन सतगुरु सोजी ना पवे अहंकार ना विचों जाए अहंकारिया नो दुख भुख है हथ तड है घर घर मगाए कूड़ ठगी गुजी ना रहे मलम्मा पाज लह जाए जिस होए पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यों लोहा पारस भेटी है मिल संगत।

हरि आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस दे सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगटे आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए सलोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो आन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम हर नामे ही त्रिपतावे हर नाम तान हर नाम देवान हर नामो रख करावे जो चेत लाए पूजे गुरमूरत।

पौड़ी। सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लय जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईंदा। सच सच्चा सतगुर इक्के, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंचे दूत कीते वस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाईंदे। तिने अंदर कूड़ फिट फिट मुंह फिके।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सच्यार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर काया।

पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड़ मैं होर को दिस ना आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चे पिछों दे आख्या कम ना आवे अद विच फिरे मनमुख वेचारा गली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता अपिहो पीवे शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावे सदा आनंद रह दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावे उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल विख पाप दोख लह जावे फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावे बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावे जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरह नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच त्याईंदे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराद दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाई पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ है मुख कोले मन खोटे दइये विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुख है नो पाया पास ना देई कोई बहन जगत मह गूह पर सगवी मल लाए मन मुख आया प्राई जो निंदा चुगली नो वे मुख करके भेजिया उथे पी मुह काला दोहां वे मुखा दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई वे मुख सुने नफरे पौली पौंदी फावा हुए कै उठ घर आया अगे संगती कुड़मी वे मुख रलना ना मिले ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओं सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुरु पूरे की सो साचे मार पचाया।

सतगुर मारे। जे मेलन नो बहु तेरा लूची है, ना देही मिलन करतारे। सत संगत ढोई ना लहन, विच संगत गुर विचारे। कोई जाए मिले हुण उना नो, तिस मारे जम जंदारे। गुर बाबे फिटके से फिटे, गुर अंगद कीते कूड़ियारे। गुर तीजी पीढ़ी वेचारिया, क्या हाथ एना वेचारे। गुर चौथी पीढ़ी टिकिया, तिन निंदक दुष्ट सब तारे। कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कारज सब सवारे। जो इच्छा सो फल पाए सी, पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे। सब निदान सतगुरु विच, जिस अंदर हर उर तारे। सो पाए पूरा सतगुरु, जिस लिखिया लिखत ललारे। जन नानक मांगे धूड़ तिन, जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे बड़ियाई। जगत भी आपे आन, तिनको पैरी पाए। डरिये ता जे किश आप दू कीचे, सब करता अपनी कला वधाए। देखो भाई, एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का। जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी। निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए। सतगुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए। अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर घरी वसाए। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुंह कढ़ाए। गुरसिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए।

सच साहा हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लह गुण कथ है निरारे सेवक भाए से जन मिले गुर शब्द सुवारे तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुंह कढ ना सकै।

तख गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मुह फिके थुक थुक मोहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल भूसे खाही जिन गुरु गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही तिनकी भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही ओना दा आख्या को ना सुने नित हौले हौल मराही सतगुर की वड़ियाई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे थाउ नाही जो सतगुर मारे तिन जाए मिलह रहंदी खुंदी सब पत गुआही ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही हर तिन का दर्शन ना करहो जो दूजे पाए चित लाही तुर करते आप लिख पाया तिस नाल केहो चारा नाही जन नानक नाम अराद तू तिस अपड़ को ना सकाही नावें की वड़ियाई वड़ी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही महला चौथा जे होंदे गुरु बह टिकिया तिस जन की वड़ियाई वड़ी होई तिस को जगत निमया सब पैरी पया जस वर्त्या लोई तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करहे जिसकै मस्तक हाथ धरिया गुर पूरे सो पूरा होई गुर की वड़ियाई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई जन नानक हर करतै आप बह टिकिया।

इन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लए छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जा दिथा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी।

सिख मेरे भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमे कड्डै धोए सच मणंजह रंग सियो सच सौदा होए तोटा मूल न आवे लाहा हर भावे सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली।

रंग चलूले अतरपती सच्चे स्यों लगा ने हो कूड़ ठगी गुजी ना रह कूड़ मलम्मा पलेट तरे हो कूड़ी कन वडाइया।

अवस्था सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ावह हर नाम सुनावह हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज करावह सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुंह जम मारिया तिस अग्गै पिछै ढोई नाही।

चौथा सतगुरु पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर धारिया, सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई, जिस वल सिरजन हारिया, सतगुरु का खड़ग संजोग हर भगत है, जित काल कंटक मार वडारिया, सतगुरु का रखन हारा हर आप है, सतगुरु कै पिछे हर सब उभारिया, जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का, सो आप उपावन हारे मारिया, एहे गल होवै हर दरगाह सच्चे की, जन नानक अगम बिचारिया पौड़ी, सच सुतिया जिनी अराध्या, जा उठे ता सच चवे, से विरले जुग मह जानी है, जो गुरमुख सच रवे, हौ बलिहारी तिनको जे अन दिन सच लवे, जिन मन तन सच्चा भामदा, से सच्ची दरगाह गवे, जन नानक बोलै सच नाम, सच सच्चा सदा नवे। सलोक महला चौथा, क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन्ना सास ग्रास ना विसरै, से पूरे पुरख प्रधान, करमी सतगुर पाई है, अन दिन लगै ध्यान, तिनकी संगत मिल रहा, दरगाह पाई मान, सौंदे वाहो वाहो उच्चरह, उठदे पी वाहो करेन, नानक ते मुख उजले, जे नित उठ संभालेन। महला चौथा, सतगुर सेविया अपना, पाईऐ नाम अपार, भौजल डुबदिया कड ले, हर दात करे दातार, धन धन से साहा है, जे नाम करह वापार, वण जारे सिख आवंदे, शब्द लगावन हार।

जन भगत है सच सच्चा जिनी आराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया, तिन अंदरों ही सच लादिया, सच साहेब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या, सच सच्चा सब दू वड्डा है, सच सेवन से सच रलादिया, सच सच्चे नू साभास है, सच सच्चा सेव फलादिया। श्लोक महला चौथा। मनमुख प्राणी मुग्ध है, नामहीन परमाय, बिन गुर मनुआ ना टिकै, फिर जूनी पाय, हर प्रभ आप दयाल होहे, ता सतगुर मिलिया।

बहु बिदरंग सुपहाय सतगुर सेती मन रत्ता रखिया बणत बनाई जिहवा सलाहे न रजई हर प्रीतम चित लाय नानक नावे की मन भुख है मन तृप्तै हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानी है दिन राती जिन बनाईया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वडियाईया सलाही सच सलाहा सच सच कीमत किने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना भुखा सब गवाईया।

आया जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला। गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किस जानदा, जो जिया अंदर वरतै। तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै। सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनतै। तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलतै। सतगुर नु मिले सो हर मिले, नाही किसे परतै। सलोक महला चौथा, एह मनुआ दृढ़ कर रखी है। गुरमुख लाइयै चित, क्यों सास ग्रास वसारी है। बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई। एहो जीअड़ा हर प्रभ वस, ज्यों भावै त्यों रख तू। जन नानक नाम बखश। महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने। खिन आगे खिन पीछे, सदा बलाइय महल ना आवे। क्यों कर दरगाह सीजै।

सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने। अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने। एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाओ। हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाओ। ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए। सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय। सतगुर पुरख निर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उते सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

को अपनी आपे पछताणी अजराइल फरेसता इन पीड़े कहानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे शाह के से परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए राम नाम धन वखरो नानक सदा ते आए पौड़ी। पंजवा।

संग जुट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिख्या ले नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे तपा लोभ लहर है गालिया जिथै थोड़ा धन वेखै तिथै तपा पिटै नाही धन बहुतै डिठै तपै धर्म हारिया भाई एहो तपा ना होवी बगला है।

गुमान कर है मूड गुमानिया विस खादी मरिए आए लगे नी देह थोड़े ज्यो पक्का खेत लुनिए जे कर्म कमावंदे तेवे हो पणिए जन नानक का खसम वड्डा है सबना दा धणिए सलोक महला चौथा मनमुख मूलो भुलिया बिच लब लोभ अहंकार झगड़ा करदिया अन दिन गुदरे शब्द ना करहे विचार शुद्ध मत करतै सब हिर लई बोलन सब बेकार जितै कितै ना संतोखी है अंतर तिसना बहु अज्ञान अंधियार नानक मन मुखा नालों टुटी भली।

के पूरै सतगुर भावै गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै जो सिखा नू लोचै सो गुर खुशी आवै सतगुर आखै सो कार कमावन सो जप कमावै।

तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हडे ज्यों भावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वडे सुध गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी।

वाथ सहावी साए नानक नाओ जपंदो तिस धनी पौड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीम ना जानी जो जन भेटै साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख एहे रतना खाणी मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी तो सादित्यै सच नाम नानक मेहमानी सलोक महला पंजवा अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरै भुख।

दे मर गए मर पे ना सकै मूल। वे मुख होए राम ते ज्यों तस्कर उपर सूल। पौड़ी सुख निदान प्रभ एक है अबनासी सुनिया। जल तल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया। ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया। मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया। तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया।

गुर भेटिया पार ब्रह्म हर पढ़ बुझ समधा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा। श्लोक महला पंजवा कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे सुख कनेहा हुए महला पंजवा बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरी भव सागर संसार बिख सो पार उतरी हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी। श्लोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित गाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अग

देव गुत्ते करतब करन पलेरिया मद माया सुत्ते फिर जून पवाईयन जम मार्ग मुते कीता पायन अपना दुख सेती जुते नानक नाए वसारिया सब मंदिर उते। सलोक महला पंजवां पठंदियां बहंदियां सवंदियां सुख सोए नानक नाम सलाह है मन तन शीतल होए। महला पंजवां लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे ना कोए जिस गुर भेटै नानका तिस मन वसिया सोए। पौड़ी सबे वस्तु कौड़ियां सच्चे नाओ मिठा साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसै उठा एक निरंजन राव रहिया।

वह आप जित खादे मन तृप्ति है। नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग में से खट है। जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी। सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया। होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै। तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया। नानक बल जास सलोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सुपाए। अन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय। सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय। पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय। परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा जीवन पद निर्वाण।

रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भाव ही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे स्लोक

पौड़ी सब निदान घर जिसद हर करे सो होवै जप जप जीव है संत जन पापा मल धोवै चरण कमल हिरदय वस है संकट सब खोवै गुर पूरा जिस भेटी है मर जन्म ना रोवै प्रभ दर्स प्यास नानक घणी किरपा कर देवै सलोक डखना महला पंजवां भोरी परम वंजाए प्रिय मोहब्बत हिक तू।

सारी पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुने सो उदरै मित्ता हर जस लिखे लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिख्या गढ़ जिता नानक लड़

तन फुटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतों की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काला जसवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया रहाउ, मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी।

तू तरवर हौ पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोग काहे दुख मानिया।

कबीर जी, अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है, जौ पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ, जस देखी है तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया, जस

कबीर निर्गुण नाम नारोस, इस परचाए परच रहो एस। गौड़ी कबीर जी, जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना बैकुंठ कहां ही, जान जान सब कह तहां ही रहाओ, कहन कहावन नह पति आई है, तो मन माने जाते हो मैं जई है, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब

तौ कीजै जो आपन जीजै। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवनहारा रहाऊ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा शत्रपथ कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूर्व जन्म हो तप का हीना, अब कहो राम कवन गत मोरी, तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ, सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत बरस तप किया कांसी, मरन पया मगहर की बासी, कांसी मगहर

मर्दन अंगा सो तन जलै काठ कह संगा इस तन धन की कवन बढ़ाई धरन परै उरवार ना जाई रहाऊ।

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाऊ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख।

केवल राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाके जिन राम ना जाने।

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावू खोजत तन मह ठौर ना पावू लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाउ एक पाए देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अनंत।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कही है सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहु मन व्यापी, मन है मार कमन सिद्ध थापी, कमन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाउ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई, कहो

तुझह ले तारू हिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

राखै कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

तत् माया कैसे जीवन हुए हमारा जब ना हुए राम नाम अधारा रहाऊ। कहो कबीर खोजो असमान राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जेहे सिर रच रच बांध तपाग सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या गर भैया राम नाम का।

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन मह।

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारे।

सोरठपी रे जी न लाज लाज तोहे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोही सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना होई।

आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो ताते अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

सूतक सूतक ओपत होई गन में सूतक मुए फोन सूतक सूतक परज बेगोई कहो रे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जप हो मेरे मीता रहाओ नैनो हो सूतक बैनो हो सूतक सूतक श्रवनी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई आसन की बिद सब को जान छूटन की एक कोई कह कबीर राम हृदय विचार सूतक तिन ना होई गौड़ी झगड़ा एक नबेरो राम जो तुम अपने जन सो काम रहाओ यो मन बड़ा के जा स्यो मन मानिया।

प्रसाद जीवत पितर नामा न कोहु मुए श्राद कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पावे है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जा।

कैसी झल देखी गौड़ी, तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया, तह उत्पत परलो नाही, जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै, सुन समाद दो तह नाही, सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़ै जाए ना मकाती, हल्की लगे ना भारी रहाऊ, अर्ध उर्द दो तह नाही, रात दिन सतह नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही, अगम अगो

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहु घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलाने अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु।

पेंड तह नाही रचनहार तह नाही जोड़नहारू सदा अतीता एह कही है किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए बिनासी का को ठाकुर का

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है कौडी बदले हारियो रे रहाओ तृष्णा त्रिखा भूख भ्रम लागी हृदय नाए बिचारियो रे उन्मत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द ना तारियो रे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बिकारियो रे कर्म भाग संतन संगानी काष्ट लोहो उधारियो रे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदीश काम सवाए गज बस परे मन बौरारे अंकस सहयो सीस बिखै बाच हर राच समझ मन बौरारे निरपै हुए ना हर भजे मन बौरारे गहयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूतन को सहसा।

देव गौड़ी अगन ना दह पवन नहीं मगन कस कर नीर ना आवे राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावे हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाओ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुर दीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे ओ रहाओ ज्यों उद्यान कुसम पर फुलत किन्ह ना कराओ लयो।

गुण गाइए जाते पाइए परम निदान रहाओ। क्या जप क्या तप संयमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत ना जानिए भाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विध निरतिया सो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले।

छाडोह परम प्रगट होए नाचोह, या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डरपै, सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ संदौरा रहाओ।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो

करे उधार, जानक वीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपहु, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये है, एक देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुस्से घर जाई रहाओ, पांच पहरुआ दर में रहते। तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत होए रहो। तव लै परगास उजारा, नौ कर देख जो कामन भूली। बस्त अनूप ना।

जास गुण गाव है तास बस है मोरे प्राणा ना रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पय मन बासन त्याग घटियो अबमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बसियो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना।

आदि बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन ही माहे ये अक्षर खिर जाहिंगे ओए अक्षर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लखै ना कोई लह लहूं तो क्या कहूं कहूं ता को पकार बटक बीज मैं रब रहे हो जाको तीन लोक बिस्थार अलह लहंता भेद शै कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन बेदेओ पायो अपंग अशेद तुरक तरीकत

आद मैं जाना लिख अर मिटै ताए न माना ओंकार लखै जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जे तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खखा एह खोड़ मन आवा खोड़े छाड़ ना दह दिस तावा खसमह जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

यह है शत्रपत पासा शक के ना रहो छाड़ के ना आसा रे मन मैं तो सिन सिन समझावा ताहे शाड कत आप बंधावा जज्जा जो

सूरज नहीं जाना, रहयो झजक नाही परवाना, कत चख चख और न समझावा, चगर किए चगरो ही पावा, नन्या निकट सो घट रहयो, दूर कहां तज जाए, जां कारण जग ढूंढ्यो, नेरो पायो ताहे, तटा बिकट काट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

न डर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढै कात्याना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़ो सो गड़ मह पावा।

बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान भरोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद भूपत पहचानिया।

बिलम आवै मगन पया ते सो सच पावै मम्मा मन स्यों काज है मन साधे सिद्ध होए मन ही मन स्यों कह कबीरा मन सा मिलिया ना कोई एहो मन शक्ति एहो मन सीओ एहो मन पंच तत् को जियो एहो मन ले जो उन मन रह तो तीन लोक की बातें कहे जैया जो जाने तो दुर्मत हन कर बस काया गाँव रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं पावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे अर जो तहां प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन समहार ना आवे हार।

एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोई। सत्सा सो नीका कर सुध हो घट परचा की बात नरुद्ध हो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राव। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो भवजल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सुवारै सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना। है तो सही लखे जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो कर

अकुल निरंजन एक है पाय, तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावे, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर भीतर सदा प्रगास, चौथ है चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कबहु ना बहो।

एकादशी एक दिस तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहू लोक का पियो अचरज भया जीव ते सीओ। तेरस तेरह अगम बखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान

पंच चोर की जाने रीत, कर छोड़े बाहर जिन जाए, नातर खरार सहराय राय, बुधवार बुध करे प्रगास, हृदय कमल मह हर का बास, गुर मिल दो एक सम धरे, उर्द पंकल है।

माही हैनस कसमल तो वह नाही सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै अन दिन आप आप स्यो लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै थावर थिर कर राखै सोई जोत दी वटी घट मह जोई बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म।

जियो की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले, राम कहत जन कस ना तरे रहाउ, तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याज अजामल तारियले, कर्ण बदक जन तेउ मुक्त भये।

अल्लाह जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश विदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

परे मोसौ को न कह समझाय जाते आवा गमन बिलाय रहाउ बहु विद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जे साजे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म बिचारी है शंका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभमान बाहर उदक पखारी है घट भीतर बेभिद बेकार शुद्ध कवन पर्व होए वो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत लेलाट हुन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह।

पी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति जिनसी, माया जिन उपाय, कर कर देखे कीता अपना, ज्यों तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई, तो पातशाह साहा पत साहिब, नानक रहन रजाई, आसा महला चौथा, सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावहो संत हो जी, सब दुख वसारन हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज वडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हौं तुद बिन अवर ना जा।

सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी ते धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एक

दात जिन दिन करकै कीती रात खसम बसार हैं ते कम जात नानक नावे बाज सनात आसा महला पहला जे दर मांगत कूक करे महली खसम सुने भावै धीरक भावै धक्के।

करी गुरु प्रसाद वस्य मन आई दुख अनेरा विचों जाई साच प्यारा आप करी अवरी को साच ना दे जे किसे देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचे कल का भाऊ।

होर नचना खुशियां मन माह रहाऊ। सत संतोख वजह दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल। राग नाद नहीं दूजा पाऊ, इतरंग नाचो हो रख रख पाऊ।

कही है, सर्ब निरंतर रव रहिया, नाल कटंब सात वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा पया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन की।

तेरा देखिया सगल भवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बिना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता।

याद जब लग हृदय न आवह याद तौ प्रवाह के ही क्या कीजे जन्म जन्म किस लीजी लीजे रहाओ मन की मत मता गल मता जो किश बोलिए सब खतो खता क्या मुंह लै की चै अरदास पाप पुन दोए साखी पास जैसा तू करह तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर कृपा अपने घर आया।

नानक अस्थिर नाम रजाय, आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासे परमल रूप, उजल मोती चूग हंस, सर्व कला जगदीश अंश, जो दिसे सो उपजै बिनसे, बिन जल सरवर कमल ना दिसे रहाउ, बिरला बूझे पावे भेद, साखा तीन कह नित भेद, नाद बिंद की सुरत समाई, सतगुर सेव परम पद पाए, मुक्तो रातो रंग रवंतो, राजन राज सदा बिकसंतो, जिस तू राख है कृपा तार, बूढ़त पाहन तार है तार, त्रिभवन मह जोत त्रिभवन मह जानिया, उल्ट पई घर घर मह आनिया, अहनस भगत करे निबलाए, नानक तिन कै लागे पाए, आसा महला पहला, गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत सियाणप लागे धूर, लागी मैल मिटे सच नाय, गुर प्रसाद रह लिवलाई, है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच

हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ। कर्म धर्म सच साचा नाओ, ताकै सद बलिहारै जाओ। जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेटे एको सो होए आसा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

गुरमुख निर्मल रह प्यारी, ज्यो जल अंब ऊपर कमल निरारी। बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया आसा महला पहला सेवक दास भगत जन सोई ठाकुर का दास गुरमुख होई जिन सिर साजी तिन फुन गोई तिस बिन दूजा अवर ना।

प्रगट जाय। सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़े बखान है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखानी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देहे दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। जिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवै। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेमो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है करह सोई, आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आसम रास पई, पुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओ

मेरा सहो जागे हों निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हों निस भर सोवा रहाव आस प्यासी सीजै आवा आगे।

पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ कर है सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राख है मान जां पत लेख है ना पवे ता सब नराफल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंधो अंधा रहाओ लख खटिए है लख संजिए है खाजे है लख आव है लख जाहे जां पत लेख है ना पवे ता जी कितै फिर पाहे लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़ है पुराण जां पत लेख है ना पवे ता सबे को परवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार अहनस हृदय जी वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को पकड़ पाई।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्मराव सच्चा नावन ता थी जा एनस लागै भाव एक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहू नखूटस नाहे आसा घर चौथा महला पहला।

घर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पेकांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासे थिर ना रहे जैसे भवह उदासे मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल रु

साद आसा कर सीमा महला पहला मन मोती जे गहना होवै पौन होवै सूत तारी खिमा सिंगार कामन।

भाव हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धरी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ।

आया तिस क्या कही है भाई जो किश करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुक्म भला तुद भावे नानक तां को मिले वडाई साचे नाम समावे रहाव किरत पया परवाना लिखिया बहुड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई जे को दरगाह बहुता बोले नाओ पवे बाजारी सतरंज बाजी।

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावे कर करनी कस पाई है पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाई है बाबा मन मतवारू नाम रस पीवे सहज रंग रच रहिया एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाऊ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछे भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करे किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारे कहो नानक सुन परथर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगै

सुख पाए, संत संगत मेल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम वजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाई आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप ले जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जले सबाई, सतगुर पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इतों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तिथ घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधरे रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मनमुख परम भुले संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्ले ना पाई, मनमुख भुला जन्म गुआई।

हर रहाउ, सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अन दिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे, सा सुहागण साची जिस साच प्यार, अपना पिर राखे सदा उर तार, नेड़े वेखे सदा हजूर।

नानक साच संभाव है सोई आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपहाई गुर कै पै साचै साच समाई बिन गुर पूरे भगत ना होए मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए मेरे मन हर जप सदा त्याए सदा

ताय अवर ना कोई गुरसागर पूरा पंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर साहिर सतगुर सच सोए पूरा भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बना

पहचान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जीव आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सियो चित लाए भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणे सतगुर मिले सच सूझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ इस युग में निरपो हर नाम है पाईऐ गुर विचार बिन नामै जम कै वस है मन मुख अंध गुआर हर कै भाणै जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणै सलाहियै भाणै मन्नै सुख होई हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आस

जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा घर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा तड़ा हर रहया समाई, हम हर स्यों तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर न कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक। रहाव जिन स्यों तड़े कर है से जाहे, झूठ तड़े कर पछो ताहे। थिर न रह मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका।

बाजी हारी हमरे हर धड़ा जे हलत पलत सब सवारी कलयुग मह धड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए जिसनो कृपा करे तिस सत संग मलाए हमरा हर धड़ा जिन एह धड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावे प्राया सिदर अटकल अपना अहंकार वधावे जैसा बीजे तैसा खावे जन नानक का हर धड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवे आसा महला चौथा हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया।

माया मल तारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत्क।

गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास ग्रासा रहाओ, नामै सुरत सुनी मन भाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सिखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मुए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवै हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सालाही, मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाऊ, हर हर गुरमह भगत रखाई, गुर तुट

अंधा, सबने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

सेई संत भले तुद पावह जिनकी पत पावह थाए। नानक आख नाराजै हर गुण ज्यों आखै त्यों सुख पाए। भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा। आया मन तुराहो हों मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है। गुरपूरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समानिया। रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरो फुरमाया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया। गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया। दर सच्चै सच्यार महल बुलाया। रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईऐ। अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ हम मैं गर्भै गर्भ आप खुआईऐ। नानक आपे आप खुआईऐ गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ। राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा सोधं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौं अन दिन हर नाम कीर्तन करूं। सतगुर मोको हर नाम बताया हौं हर बिन किन पल रह ना सको। रहाउ हमरै सरवण सिमरन हर कीर्तन हौं हर बिन रह ना सको। हौं एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सकै तैसे हर जन क्यों।

हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान असावरी महला चौथा माई मोरो प्रीत मराम बताव होरी माई हों हर बिन खिन पल रह ना सकूं जैसे कर हल बेल रिझाई रहाऊ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कहताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख सरन जगदी सुर प्यारी मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

कोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस भौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा। एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै, एक संचह गिरी तिन हुए ना आपै। एक सती कहावे है तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे। तप करते तपसी पुलाय, पंडित मोहे लोभ सवाय। त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुरु राखे दे।

पर जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रहे सुमाई आसा महला पंजवां निज भगती सी।

वख वख परमावै घर की नायक घर वास ना देवै जतन करूं पुरजाई फरेवै रहाव तुरकी भेजी।

मेरो सब दुख जो हो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान सद कुचिया सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जहो पिरह शिंगारी थिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उनमू कर परना

तन ते मन निर्मल हर हर गुण गाए पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े ने

सिर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवे, नाले लए सदावे, अनहुंदा अजगर भार उठाए।

रहना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत

के चौपदे एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे रहाओ चार पहर चहो जुगह समाने रैन पई तब अंत ना जाने पंच दूत मिल पिरो विछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी।

निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ तोट न आवे नखुट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना किन हर धन पाया

पंजवां हर रस छोड़ होशै रस माता घर मह वसत बाहर उठ जाता सुनी ना जाई।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समग्री पूरे ठाकुर की।

रहाउ त्रिपत अगावन साक्य नाय आठ सठ मज्जन संत पुराय सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंधकूप में।

गुर पूरै प्रगट मार्ग दिखाया, जाप ताप कछ उकत न मोरी, गुर नानक सरनागत तोरी। आसा महला पंजवां ते पदे दो, हर रस पीवत सद ही राता।

ही ब्योहारा भाग्यामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी आसा महला पंजवा दोपदे पई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाय गुण निदान नित गावे नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवा औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिन सिया थाउ ताप गया बचन गुर पूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवा पांचत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

आए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत सर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, एह अपने ग्रह भीतर वारी। जन्म मरण चूके सब भारे, मिलत संग भयो मन निर्मल।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल मह जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी बहुत दरबहस्ती अर घोड़े।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

0: कर कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा घर पंजवां महला पंजवां

साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वडभागे कृपा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर छेवा महला पंजवा जो तुद पावै सो परवाना सुख सहज मन सोई करन कारण समरथ अपारा अवर नाही रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता से।

जन्म जन्म की मल धोवै पराई, अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई, जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँच ना साकै काहू बातै आगै ठौर ना।

गोविंद भजन की मत है होरा, बरमी मारी साप ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई।

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाले। आसा महला पंजवा उदम करत होए मन निर्मल नाचे आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखे मन में है इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल कुंगरू अनहद शब्द।

नावै कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुरे आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा तड़का जन्म मरण दुख भागे।

आया रसक रसक बिगसानारी आसा महला पंजवा बंधन काट बसारे औगन अपना बिरद समारिया होए कृपाल मात पित न्याई बारक ज्यों प्रतपारिया गुरसिख राखे गुरु गोपाल काढ़ लिए महापव जलते अपनी नदर निहाल रहाव जा कै सिमरन जमते छुटिया हलत पलत सुख पाई सास ग्रास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाई है।

मन की होर किस पह आख सुनाइए, बिन नावे सब जग बोराया, नाम मिले सुख पाइए।

की कृपा तिसको बिपना को भाखै ओहो सुख ओहा वडियाई। जो प्रभु जी मन पाणी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिलै रंग माणी।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी। काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी। महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ने हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवां, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया, आसा महला पंजवां, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहु विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है भाई रे रहाउ, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पति आन जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरा ओले भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले रहाउ हुक्म बूझ रंग रस माणी सतगुर सेवा महानिर्वाणी जिन तू जाता सो गिरस्त उदासी।

शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक सुर्ग फिर अवतार, गिरस्त मह चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वासे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर की

चित आवे सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत।

बाट घाट जपीजै गुर प्रसाद हर अमृत पीजै दिन सरैन हर कीर्तन गाइयै सो जन जम की वाट ना पाइयै आठ पहर जिस विसरह नाही गत होए नानक तिस लग पा।

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सत शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

नाम साध संग मन सोवत जागे तब प्रभ नानक मीठे लागे आसा महला पंजवा एको एकी नैन निहारो सदा सदा हर नाम समारो राम रामा रामा गुण गावो संत प्रताप साध कै संगे हर हर नाम त्यावो रे रहाओ सगल समगरी जा कै सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलो खिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता।

रतन जन्म एहो सफल भया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवां, सतगुर अपना सद सदा संहारे, गुर के चरण केस संग चारे।

आपे पेड़ बिसथारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एक ओही

कोट प्रभ तोरी आसा महला पंजवा हर हर अखर दुए एह माला जपत जपत भय दीन दयाला करो बेनती सतगुरे अपनी कर कृपा।

मुख हर हर बोले, सोजन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला तां कै संग जाई, आसा महला पंजवा, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेप ना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई पा।

क्रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहो गुण में वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नानक।

जानी, भोर पया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी, प्रभ मिलबे की लालसा, तांते आलस कहां करोरी रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारेउ, खिसर गयो भूम पर डारेउ, साध मोहे लादी अहंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे।

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई। सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत। कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया। काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया। सो थान मूड निश्चल कर पाया।

उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लोरे, उस बिना को मुख नहीं जोरे, ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहे रीरी रहाओ, उनके संग तू ग्रह महमाहर, उनके संग तू हुई है जाहर, उनके संग तू रखी पपोल, उस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साक जगत, उनके संग तेरी सब विद थाटी।

सब हुमा गर्भ मोह तज हूं रेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमक निमक एही आराधो दिन सरहन ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

संबाहा निकसिया फूक ता हुए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतियां मोहे पच।

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी जो मिली तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ नाही लाग छुट्टो सत।

आठ घाट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जा

बाहां पकड़ हम राखा, आसा मोहल्ला पंजवा, सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी, इहां उहां कामना प्राणी, संत तृप्ता से हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रव तुमरी रजाए रहाओ, संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वस्या हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले हे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है, रहाओ जां का दान नुखूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाई, सास सास सो गुण निद गाई, दूर ना होई कतहूं जाई, नदर करे ता हर हर पाई, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहिब कै मन भावै वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु।

तेरा जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा मान न माने तू धनी तेरा परवासा बिन साचे अन टेक है सो जानहु काचा रहाउ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए जिस गुरु पूरा भेट सी सो चले रजाए चतुराई सियाणपा कितै काम न आई है टुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है जे लख कर्म कमाई है किस पवै ना बंदा जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा आसा महला पंजवां सर्व सुखा मैं पालिया हर जीवड ना कोई गुर पुठे ते पाई है सच साहिब सोई बलिहारी गुर अपने सद सद कुरबाना नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो कीजै दाना रहाउ भागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कहा गुर विवेक सत सर ओहो आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर नाम त्यावो सद सदा हर हर मन रंगे।

सुनी सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मस्ताक भई

कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए सर्व रहया परपूर सच्चा

सगल रोग राखन हार अपार राखै अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद घना नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भये

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाण पचातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ भरता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेट हर राय री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री साई सुहागण नानका जो पानी करतार री आसा महला पंजवां दीगण डोला तऊ लो

हम शूटे अब उना ते होए हम ते शूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमै बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाओ ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने सद सद बल जाओ गुरु विटो हो वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभु भावे पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम पै बिन से भ्रम मोह गए को दिसै ना बिया नानक राखे।

तव सर्व सुख पावो आज्ञा पावो के ना पावो एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हम मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो ताकि शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो।

गंधण वहन सुन है उर्जावह नाम लैत अलकाया निंद चिंद को बहुत अमाहयो बूजी उल्टाया पारतान पारती निंदा अखाद खाहे हरकाया साच तर्म स्यो रुच नहीं आवै सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हर नाया नानक आहे शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाई मोह माया कर बांधे जह जानो सो चीत ना आवे अहम बुद्ध भय आंदे मन बैरागी क्यों ना अरादे काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखे की ब्यादे रहाऊ मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे पलखिन सीजे अर जादे जैसे मीठे साध लुभाए झूठ धंद दुर्गम दे काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे दीप वारी पुरख बधाटे बहुर बहुर जन माते जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन तो गुरमेल सब सुख लादे कहो नानक दिन रैन त्यावो मार काढ़ी सगले अपादे इउं जपियो भाई पुरख बधाते

आद कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोह तरंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ, पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर। जैसा संग बिसियर स्यो है रे, तैसो ही एहो परग्रहो, बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना, छोड़ जाहे तिन ही स्यो संगी, साजन स्यो बैराना। सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा, कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा। आसा महला पंजवा, दोपदे लूक कमानो, सोई तुम पेखेओ, मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे, फिर पाछे पछतानी। प्रभ मेरे सब बिद आगे जानी, भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ, जित जित लाए तित तित लागे।

आवे रहाउ। तिस सेवक कै हो बलिहारी, जो अपने प्रभु भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसने आवे, आसा घर ग्यारवां महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावे बहु बिद। जैसा है ओह तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम पीतर। सुख नाही परवेश सारी, साजन संत हमारे लीता। बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाए। एहो जन्म पदार्थ जीतारी, रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी। कहो कमन बिद तरिया रे, कुमन केर अगाह गाखरी। गुर शब्दी पार उतरिया रे, खोजत खोजत खोज बिचारे। तत नानक एहो जाना रे, सिमरत नाम निदान निर्मोलक। मन मानक पथियाना रे, आसा महला पंजवा दुपदे। गुर प्रसाद मेरे मन वसिया, जो मांगो सो पावो रे। नाम रंग एहो मन त्रिपताना, बहुर न कतहु तामो रे। हमरा ठाकुर सब ते उच्चा, रहण दे।

नानक दास प्रभ आप पहराया, प्रम पौ मेट लखावोरे, आसा महला पंजवां, चार बरन चौहा के मर्दन, खट दर्शन कर तलीरे, सुंदर सुगर स्वरूप सियाने, पंचहो ही मोहे शलीरे, जिन मिल मारे पंच सूर वीर, ऐसो कौन बलीरे।

तिन जन मिर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर

पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियानपा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे ना

महा पौजल लंगी है, सदा हर गुण गाओ, जन्म मरण निवारी है, दुख ना जम पुर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग, दीन बंदप जी दाता, सरन राखण जोग, मेरे मन त्याए हर हर नाम, हलत पलत सहाए संगे, एक स्यों लिवलाओ रहाओ, वेद शास्त्र जन

दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत सास सास त्याए सो

ते आनपा आठ पहर प्रभ जाप मीत सखा सहाये संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ सर्व सुख बद्दी वड्याई जप जीवै नानक नाओ आसा महला पंजवां उदम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मह राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यो त्यो रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मजन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रवतारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कलयुग उधारिया।

साध सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत है।

सोहिना कारण करना तारण धरना एकै एकै सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहिना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओलाह अलख लखाया गुरते पाया नानक एहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाही